और झूठा मिथ्या क्या समझेगा, वो तो उल्टा बहक जाएगा, फिसल जाएगा। उसको कहना पड़ेगा भाई प्रातः काल जल्दी उठना, स्नान करके नया कपड़ा पहन लेना, ये शरीर ही भगवान का मंदिर है, और एक लोटा जल भगवान शंकर पर चढ़ा देना, वही परमात्मा है। धीरे धीरे दो चार साल तक जब वह किसान नहा धो करके भगवान शंकर पर जल चढ़ाता है, अपने आप जिज्ञासा होगी कि ब्रह्म तो अजर अमर है, ये पत्थर तो टूट फूट जाता, ये कैसे ब्रह्म हो सकता। जब जिज्ञासा होगी तो अपने आप वह वेदांत के चिंतन में अग्रसर होगा। तो चारवाक दर्शन का पूर्व पीठिका है। अपने यहां भी वेदांत की पूर्व में जहां पर अधिकारी का विवेचन है वहां पर क्या कहते हैं, अनुबंध चतुष्टय वान अधिकारी, चार अनुबंध है, अनुबंध सबको पता ही है। तो साधन चतुष्टय अधिकारी है, साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय का अर्थ है विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्षा। तो षट संपत्ति तभी होगी जब आपका शरीर इंद्रियां स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ विचार होते हैं। अब शरीर रुग्ण है असमर्थ है तो आप अच्छी तरह से वेदांत का विचार नहीं कर सकते, उसके शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए अपने यहां वैदिक काली व्यवस्था थी कि शैशव्य व्यस्त विद्या नाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नंति तनु तेजताम। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में वैदिक व्यवस्था का जिक्र किया। शैशव अवस्था में 1 से 25 वर्ष तक वेदाध्ययन आदि करना चाहिए, युवा अवस्था आने पर विषयों से वैराग के लिए गृहस्थाश्रम को अपना ले। जब विषय रस से मन वैराग हो जाए, सबको वैराग होता है, मैंने बहुतों से पूछा युवकों से, तो वैराग होने के बाद फिर वानप्रस्थ योगाभ्यास, और शरीर कैसे छोड़े तो योगे न अंते तनु त्यजताम। योग मतलब कि जीवात्मा का परमात्मा के साथ जो मिलन है, चिंतन है, इस प्रकार से शरीर को त्याग करे, क्योंकि कच्चे घड़ा पर जो लिख दिया जाता है वही पकाने पर अमीट होता है, पकने के बाद वो फूट जाएगा। तो नारायण यह जो चारवाक दर्शन है इसकी भी दर्शन पदवी तभी पड़ती है जब इसमें कुछ रहस्य आप शरीर को स्वस्थ रखे निरोग रखे। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो जैन दर्शन आता है, उसका प्रधान है विचारिष्यादवाद, जिसको कहते सप्तभृंगी नय कहते हैं, बड़ा विस्तार विवेचन है इसमें भी आत्मा अनात्मा का जगत का हर बात में कहते, शायद ऐसी बात हो सकती है नहीं भी हो सकती है, ऐसा हो सकता हम कह नहीं सकते, कह भी सकते हो भी सकता नहीं हो सकता, सप्तभृंगी नय पर आधारित जो स्यादवाद है वह जैन दर्शन का देन है। आपको विचार करने की शैली ये प्रदान करता है कि आप ऐसे ही नहीं मान लेना बल्कि हर चीज को विचार के ऊपर आरूढ़ करके समझना। ऐसे बौद्ध आदि दर्शन आते हैं तो 6 दर्शन के बाद तब जाकर के अपना न्याय वैशेषिक सांख्य योग उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा और फिर आपका वेदांत दर्शन आता है। तो शेष जो बात है ना आपके 12 दर्शन की, कल सीधे हम लोग 12 दर्शन पर ही संक्षिप्त अवलोकन करेंगे, इसके बाद तब वेदांत सब पर विचार करेंगे। वेदांत है क्या, वेदांत हम किसे कहते हैं, वेदांत की विषय महिमा बतलाई गई है कि आ सुप्ति आमृते नयेत कालम वेदांत चिंतया, जागने से सोने तक
जीवन से मौत तक वेदांत का चिंतन करे। वेदांत मतलब अपने आपा का, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसका बार बार अहर्निश चिंतन करना चाहिए। इसकी महिमा अनंत है।

ऋषिकार ने ऋषि व्याग एक बात कही कि बुद्धि पूर्वम कृतम पापम कृष्णम दहति वह निवत, जान बुझ कर किया गया अपराध भी जो वेदांत का श्रवण करते हैं वैसे नष्ट हो जाता जैसे आग ईंधन के पहाड़ को राख कर देती है। तात्पर्य है कि आपने समझ लिया कि मैं तो आत्मा हूं, चेतन हूं, अधिष्ठान हूं, ये तो सब शरीर पर कल्पित है, तो आपने उससे अपना किनारा कर लिया। अब ना आपको पाप से संबंध, पुण्य से। जिस प्रकार कोई फैक्ट्री का मालिक हो, फैक्ट्री बहुत राग द्वेष से हजारों आदमी बेचारा विक्षित परेशान रहता व्यवस्था में, जिस दिन दूसरे को वसीयत लिख दिया उसके बाद कोई टेंशन नहीं, चाहे फैक्ट्री लॉस में जाए चाहे वह विकास करे। ऐसे आप जो अज्ञानावस्था में अपने को 3.5 हाथ वाला देव अभिमान कर रहे हैं मैं हूं, वह अभिमान जैसे ही विशृंखलित हो जाता है, विसर्जित हो जाता है, और आप जब भूमा अभिमान में आरूढ़ हो जाते हैं, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पी सुखमस्ती, मैं ब्रह्म चेतन आत्माओं शरीर आदि नहीं, तो संसारक के विच्छेद होने के कारण आपको संसार का सारा अपराध आपके समान एक क्षण में जलकर राख हो जाता है। तो श्रवण की बड़ी महिमा है, शेष कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। हरि ओम शांति।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 4. Thank you.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

ॐ कपटवर्जिताय नमः, ॐ कमनीयाय नमः, ॐ कलानाथशेखराय नमः, ॐ कम्बुगन्धराय नमः, ॐ गन्धर्पकोटिसदृशाय

ओम वैश्वानर विलोचनाय नमः। ओम समस्त भुवन व्यापिने नमः। ओम समृद्धये नमः। ओम सततोदिताय नमः। ओम सूक्ष्मात् सूक्ष्मतराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूक्ष्म स्थूलत्ववर्जिताय नमः।

नमः ओम सुब्रुवे नमः ओम सुखगणाय नमः ओम सुधिये नमः ओम भद्राय नमः ओम भद्रप्रदाय नमः ओम भद्रवाहनाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम भगनेत्रहर

ओम जन्म कर्म निवारका नमः, ओम मोचकाय नमः, ओम मोह विच्छेत्रे नमः, ओम मोदनीयाय नमः, ओम महाप्रभवे नमः, ओम युक्तकेशाय नमः, ओम विविशदाय नमः, ओम विश्वक्सेनाय नमः, ओम शोधकाय नमः, ओम सहस्राक्षाय नमः, ओम सहस्रांघ्रजे नमः, ओम सहस्रवदनाम्बुजाय नमः।

नमः, ओम शतक्रतवे नमः, ओम कूटस्थाय नमः, ओम कूर्मपीठस्थाय नमः, ओम कूष्मांड गृहमोचकाय नमः, ओम कुलंकृषकृपा

नमः ओम विरामाय नमः ओम विविधासृजाय नमः ओम विदग्ध मुग्ध वेषाढ्याय नमः ओम विश्वातीताय नमः ओम शोकदाय नमः ओम मायानाट्य विनोदज्ञाय नमः ओम मायानटन शिक्षकाय नमः ओम मायानाटककृते नमः ओम मायिने नमः ओम मायायंत्र विमोचकाय नमः ओम वृद्धिक्षय निर्मुक्ताय नमः ओम विद्योताय नमः ओम विश्ववंचकाय

0: சிவாய. யூஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் .org ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் .org. ஓம் நம சிவாய.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhara Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
2: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Shitalanga Bhujangah, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, Itham Shitam Prabhutam, Tavakanaka Sabha Nathavodham Kvashaktih, चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये गांगम वारी मनोहारि मुरारि चरणच्युतम् त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम् श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते पुण्ये विरिञ्चेः पुरे नित्यं सन्निहितं किलाकलयितुं क्षीराभिषेकादरं श्रीगारुत्मत वल्लिका सहचरं मार्गे सहायं नृणाम् ஸ்ரீமத் தீக்ஷித விப்ரதைவதவரம் சஞ்சிந்தயே சங்கரம். ஸ்ரீமத் அப்பைய தீக்ஷிதேந்திர ரசிதஸ்ய கங்காதராஷ்டகஸ்ய த்ருதீய ஸ்லோகஹ. அஸ்மின் ஸ்லோகே த்வே கதே கதிதே. பிரதமா கதா மார்க்கண்டேய விருத்தாந்தஹ, த்விதீயா கதா சுதர்சன சக்கர ப்ராப்த்யர்த்தம் பகவதா ஹரிணா க்ருதம் சிவாராதனம். ஸ்லோகஸ்யாஸ்ய பிரதம த்விதீயயோஹ பாதயோஹ யமதேவ தர்ஜன ரூபாம் ஆர்த்திமாபத்யமானஸ்ய மார்க்கண்டேயஸ்ய முனேஹே ஆர்த்திஹந்தாரம் மிருத்யுஞ்சயம் தேவம் ஸ்துவந்தி தீக்ஷிதேந்திராஹ. ஏவம் பவதி ஸ்லோகஹ. மிருத்யும் வக்ஷசி தாடயன் நிஜபத த்யானைக பக்தம் முனிம் மார்க்கண்டேயமபாலயத் கருணயா லிங்காத்விநிர்கத்யயஹ. நேத்ராம்போஜ சமர்ப்பணேன ஹரயே பீஷ்டம் ரதாங்கம் ததௌ ஆர்த்தத்ராண பராயணஸ்ய பகவான் கங்காதரோ மே கதிஹி இதி. அன்வயஹ ஏவம் பவதி, யஹ லிங்காத் விநிர்கத்ய மிருத்யும் வக்ஷசி தாடயன் நிஜபத த்யானைக பக்தம் முனிம் மார்க்கண்டேயம் கருணயா அபாலயத் யஷ்ச நேத்ராம்போஜ சமர்ப்பணேன ஹரயே அபீஷ்டம் ரதாங்கம் ததௌ சஹ ஆர்த்தத்ராண பராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மே கதிஹி இதி. ஸ்லோகஸ்யாஸ்ய பிரதம த்விதீயயோஹ பாதயோஹ பிரயுக்தஹ ஏகைகோபி சப்தஹ பத்மபுராணஸ்ய உத்தரகண்டஸ்ய ஷட்த்ரிம்ஷதுத்தர த்விசததமாத்யாயஸ்ய கதிபய ஸ்லோகானாம் சாரஹ. பத்மபுராணஸ்ய உத்தரகண்டே பிரதிபாதிதம் சங்கர கிருதம் மார்க்கண்டேயானுக்ரஹம் சங்க்ருண்ஹந்தி. யஹ நிஜபத த்யானைக பக்தம் மார்க்கண்டேயம் முனிம் கருணயா அபாலயத் சஹ ஆர்த்தத்ராண பராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மே கதிஹி இதி. யஹ யமபாஷ கிரஹீத மார்க்கண்டேயா லிங்கிதஹ லிங்கஹ நிஜபத த்யானைக பக்தம் ஸ்தவனகரணோத்யதம் இத்யர்த்தஹ. மார்க்கண்டேயம் முனிம் சங்கரானுக்ரஹேண முத்கலமுனிகன்யாயாம் மருத்வத்யாம் ஜாதம் மிருகண்டோர் முனேஹே ஷோடஷாப்த பரிமிதாயுஷம் சர்வகுணோத்க்ருஷ்டம் ச சூனும் கருணயா தத்துஹ்க பிரஹாணேச்சயா அபாலயத் மிருத்யுபாஷாத் அரக்ஷத் தத்பாலன பிரகாரமாஹுஹ. லிங்காத்விநிர்கத்ய மிருத்யும் வக்ஷசி தாடயன் இதி. லிங்காத் ஆத்மீயேனைவ நாம்னா ஸ்தாபயித்வா தேன பூஜிதால் லிங்காத் விநிர்கத்ய ஆவிர்பூய மிருத்யும் யமம் வக்ஷசி தாடயன். பத்மபுராணே உத்தரகண்டே மாகமாச மாஹாத்மியே வசிஷ்டதிலீப சம்வாதே ஷட்த்ரிம்ஷதுத்தர த்விசததமாத்யாயே மார்க்கண்டேய விருத்தாந்தஹ கதிதஹ. தத் கதாயாஹ பூர்வரங்க பிரஸ்தாவனார்த்தம் மிருகண்டு நாம்னஹ மிருகசங்கு முனிபுத்ரஸ்ய விருத்தாந்தம் வக்தி பகவான் வசிஷ்டஹ. மிருகண்டுஹு उवास सुचिरं कालं काश्यामेव महामनाः तस्य पुत्रो महातेजः मार्कण्डेय इति श्रुतः प्रसादादेव रुद्रस्य मरुद्वत्यामजायत मार्कण्डेयो मुनिश्रीमान् आराध्य तपसा शिवं दीर्घमायुश्शिवाल्लब्ध्वा ददर्श प्रलयान् बहून् अनपत्यो मृकण्डुश्च भार्यया स महामुनिः शङ्करं तोषयामास तपसा नियमेन च तुष्टश्चाह पिनाकीतं भार्यया सहितं मुनिम् इति तदाराधनतुष्टः भगवान् श्रीशङ्करः तयोः पुरस्तात् प्रादुर्भूय कीदृशं पुत्रम् इच्छसीति पृष्ट्वा तदभीष्टं चिरायुषं गुणवन्तं च पुत्रं ददावित्याह किमिहेच्छसि पुत्रं त्वं निर्गुणं चिरजीविनम् आहोस्विदेकं सगुणं सर्वज्ञं षोडशाब्दिकं वसिष्ठ उवाच इत्युक्तः सोऽपि धर्मात्मा नाहमिच्छामि निर्गुणम् अल्पायुरपि पुत्रो वा सर्वज्ञोस्तु जगत्पते श्रीशङ्कर उवाच तर्हि मे भविता पुत्रः षोडशायुः सुधार्मिकः सर्वज्ञो गुणवान् लोके कीर्तिमान् ज्ञानसागरः भार्या तस्य चिरादासीत् अन्तर्वत्नी मरुद्वती तनयस्तपनाकारः मरुद्वत्यामजायत इति तदनु भगवत्प्रसादात् जातस्य तस्य पुत्रस्य सर्वमपि वैदिकं संस्कारं यथाविधिचक्रे इत्याह जातकर्म स्वयं चक्रे वेदव्यासो महामुनिः नामकर्म ततश्चक्रे मुनिरेकादशेहनि उपाकर्म ततः कृत्वा वेदमध्यापयत्सुधीः इति अथ गच्छता कालेन मार्कण्डेयस्य अन्त्ये काले सम्प्राप्ते सति तत्पित्रोः शोकदशां तयोः तादृशदशादर्शनेन तस्य मार्कण्डेयस्य अग्रिमां प्रवृत्तिमाह सम्प्राप्ते षोडशेऽब्दे तु मार्कण्डेयस्य धीमतः मृकण्डुः शोकदीनात्मा विललापाकुलेन्द्रियः मार्कण्डेयोऽपि तं दृष्ट्वा विलपन्तं सुदुःखितं मृकण्डुरुवाच तव हेतोरहं वत्स शोचामि शृणुमे वचः आयुषोडशवर्षाणि तव दत्तं पिनाकिना सकालोऽयमिह प्राप्तः तस्माच्छोचामि नन्दन वसिष्ठ उवाच पित्रेति कथितं श्रुत्वा मार्कण्डेयो ब्रवीदिति मन्निमित्तः पितशोकं कदाचिदपि मा कृथाः यतिष्यामि तथा तात यथा यास्यां यमर्त्यतां समाराध्य महादेवं वांछितार्थप्रदं शिवं मृत्युञ्जयं विरूपाक्षं सर्वज्ञं सर्वदंसतं कालकालं महाकालं कालकूटविशाशिनम् इति श्रुत्वा वचस्तस्य पितरावतिहर्षितौ सर्वं शोकं परित्यज्य प्रहृष्टाविदमूचतुः पितरावूचतुः तद्गच्छ शरणं तात नातः परतरं हितं वसिष्ठ उवाच पित्रोरनुज्ञां सम्प्राप्य दक्षिणार्णवरोधसि लिङ्गं संस्थाप्य विधिवत् मार्कण्डेयो निजाह्वयं पूजितश्च महाभक्त्या मार्कण्डेयेन शङ्करः इति मृत्युकाले शिवपूजानिरतं तं मार्कण्डेयं कालः हन्तुं प्रचक्रमे तेन यूना वारितस्यापि तस्य कालस्य प्रवृत्तिमाह शिवपूजा प्रसक्तं च तद्दिने स्तोतुमुद्यतम् आजगामतमुद्दिश्य कालो मृत्युसहायवान् वृतरक्तान्तनयनः सर्पवृश्चिकरोमवान् दंष्ट्राकरालवदनः चूर्णिताञ्जनसन्निभः समागम्य च तस्यासौ कालः पाशमपासृजत् कण्ठार्पितमहापाशः मार्कण्डेयस्तमब्रवीत् मार्कण्डेय उवाच कालतावत् प्रतीक्षस्व कालं मम महामते निर्वर्तयाम्यहं यावत् महास्तोत्रं जगत्पतेः शिवस्तोत्रमनिर्वर्त्य न क्वचिच्च व्रजाम्यहं न स्वपामि न भोक्ष्यामीत्येतन्मे व्रतमाहितं येत्र विघ्नं प्रकुर्वन्ति शिवस्तोत्ररतात्मनं ते चिरेण विनश्यन्ति त्वामतो वारयाम्यहं यथैव राजभृत्यानां राजाशास्तैव नापरः तथैव शिवभक्तानां शास्तासौ परमेश्वरः वसिष्ठ उवाच स एवं तर्जितस्तेन భగవాన్ వివృతే క్షణ కాలో భృశం ఋషేత్యాహ గ్రసన్నివ జగత్రయం. కాల ఉవాచ కింవాత్ర బహునోక్తేన పశ్యమే విక్రమం బలం సపాతు త్వాం మహాదేవ యస్యదాసోసి సాంప్రతం. వసిష్ఠ ఉవాచ తేనైవ గర్జతారాజన్న కాలేనాసౌ మహాముని గ్రస్థుం హఠాత్ సమారబ్ధ రాహుణైవం యథాశశి ఇతి. స్వభక్తయాతనాం సోఢుమక్షమః భగవాన్ శివః లింగాత్ ప్రాదుర్బభూవేత్యాహ లింగాదథ సముత్తస్థౌ మూర్తిమాన్ పరమేశ్వరః ఇతి. కాలస్య తాడనేన భగవాన్ మార్కండేయం రరక్ష ఇత్యాహ. గర్జన్మేఘ ఇవోదగ్రం హుంకృతేన స తత్క్షణాత్ ఉద్ధృత్య పాదకమలం ప్రజహార భుజాంతరే పాదప్రహారచకితః దూరే మృత్యుః పపాతః ఇతి. కోపావిష్టం తం భగవంతం స్తుత్యాతోషయామాస మార్కండేయః ఇత్యాహ. దూరే పతితమాలోక్య కృతాంతం భీషణాకృతిం మార్కండేయోథ తుష్టావ తేన స్తోత్రేణ శంకరం ఇతి. అస్మిన్నధ్యాయే మార్కండేయకృతం శివస్తోత్రం అవధేయం. తద్ధి తేన కృతం శివప్రపదనం ద్యోతయతి. తద్భక్త్యా ప్రీతః భగవాన్ శివః తస్మై దీర్ఘమాయుః ప్రాయచ్ఛత్ ఇత్యాహ. ఆయుఃప్రాదాదపర్యంతం అనేక ప్రళయావధి మార్కండేయో మహాతేజాః దేవదేవ ప్రసాదతః అమృతత్వమనుప్రాప్య దదర్శ ప్రళయాన్ బహూన్ ఇతి. మార్కండేయ కృత శివస్తోత్ర పారాయణేన భాషణమిదం సమాపయామి. మార్కండేయ ఉవాచ రత్నసానుషరాసనం రజతాద్రిశృంగనికేతనం శింజినీకృతపన్నగేశ్వరమచ్యుతానలసాయకం క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదశాలయైరభివందితం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమః పంచపాదపపుష్పగంధిపదాంబుజద్వయశోభితం భాలలోచన జాతపావకదగ్ధమన్మథ విగ్రహం భస్మదిగ్ధకలేవరం భవనాశినం భవమవ్యయం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమః మత్తవారణముఖ్యచర్మకృతోత్తరీయమనోహరం పంకజాసన పద్మలోచన పూజితాంఘ్రిసరోరుహం దేవసిద్ధతరంగిణీ కరసిక్తశీతజటాధరం చంద్రశేఖర

Nama idam Sri Dakshina Murtaye. वृत्ति ज्ञान की प्रक्रिया बता रहे हैं. हम जब जगत के पदार्थों को देखते हैं तो ये पदार्थ दिखते हैं इसलिए हम देखते हैं, ये बात नहीं है. इन पदार्थों को हम देखते हैं इसलिए दिखते हैं, दो चीज हैं. पहली बात, पदार्थ दिखते हैं इसलिए हम देखते हैं, ये सही है कि हम देखते हैं इसलिए ये दिखते हैं, ये सही है. वेदांत सिद्धांत विज्ञान ये कहता है कि पदार्थ दिखते हैं इसलिए हम देखते हैं, और वेदांत सिद्धांत ये कहता है कि हम देखते हैं इसलिए दिखते हैं. ये दोनों में बड़ा अंतर है. पदार्थ दिखते हैं और हम देखते हैं, इसमें पहले पदार्थ की सत्ता और स्फूर्णता सिद्ध हो तब हम देखने वाले, हम दूसरे नंबर में होंगे, पहले नंबर में पदार्थ होगा. तो पदार्थ दिखाई पड़ने में पदार्थ में प्रकाश होना चाहिए, तभी पदार्थ दिखेगा. और दूसरे नंबर में हम देखते हैं तभी पदार्थ दिखते हैं. तो ये हुआ कि प्रकाश हमारे में है इसलिए पदार्थ दिखते हैं. ये दो वाक्यों में बिल्कुल विरोधाभास है. पहले वाक्य पदार्थ दिखाई पड़ते हैं तब हम देखते में प्रकाश पदार्थ में सिद्ध होगा. दूसरे वाक्य में हम देखते हैं तभी पदार्थ दिखते हैं, इसमें प्रकाश हमारे में सिद्ध होगा. तो वेदांत आत्मगत प्रकाश मानता है, पदार्थगत प्रकाश नहीं मानता, यही बात चल रहा है. आप कैसे देखते हो पदार्थ को, तो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं. जैसे घटोदर स्थित, घड़े के अंदर नाना छिद्र घटोदर स्थित, अनेक छिद्रों से युक्त हुआ हुआ जो घड़ा, उस घड़े के अंदर यदि दीपक जलाकर दिया जलाकर कोई रख देता है घड़े के अंदर, तब मूल रूप में बाहर से देखते समय में दिए का स्वरूप तो नहीं दिखेगा, दीपक का स्वरूप तो नहीं दिखेगा, परंतु उन छिद्रों से प्रकाश बाहर निकलते हुए दिखेंगे. और उन छिद्रों से जो प्रकाश बाहर निकलते हैं तब उन प्रकाशों से बाहर के पदार्थ प्रकाशित होते हैं, तब फिर हमको दिखता है कि हमने पदार्थ देखा. अब देख लो ये दृष्टांत, बड़ा ध्यान देकर सुनना. दीपक यदि घड़े के अंदर न हो, बाहर रखी हुई हो खुले में, तब उस दीपक से निकलने वाली रोशनी से उस स्थान के सारे पदार्थ प्रकाशित होते हैं और दृष्टा को ज्ञात होता है. और वो ये कहता है कि मैं इस सारे पदार्थों को देखता हूं और जानता हूं. कैसे देखा, तो बोले दिए की रोशनी से मैंने देखा. ये सभी लोग, सभी को अनुभव है और सभी यही बात कहते हैं. लेकिन वही दिया अनेक छिद्र से युक्त हुआ हुआ घड़े के अंदर जल रहा हो और उस दिए की रोशनी अलग अलग छिद्रों से बाहर निकल रही हो, तो वहां रोशनी का भी भेद सिद्ध हो जाएगा. और ये कहेगा कि पूर्व के तरफ के पदार्थ मैं पूर्व के छिद्र से निकलते हुए रोशनी से देख रहा हूं, पश्चिम की घड़े के पश्चिम की तरफ की पदार्थ
घड़े के पश्चिम की तरफ के छिद्रों से निकलते हुए रोशनी से मैं देख रहा हूं। तो सामान्य व्यक्ति यही तर्क देगा कि घड़े के पश्चिम की तरफ के छिद्र से निकलने वाले रोशनी से पूर्व के तरफ के पदार्थ प्रकाशित नहीं होते, यही तर्क देगा वो। आप लोग भी यही तर्क दोगे, बोलो। थोड़ा सा विचार करने का ये प्रसंग आ गया है। कमरे के बीचों बीच घड़ा रखा हो छिद्रों वाला, और उस घड़े के अंदर, पहले तो आप सामान्य बात समझ लो, कमरे के बीचों बीच एक दिया जला रहा, जला के रखा गया है, और कमरे में तमाम पदार्थ हैं चारों तरफ। तो उस कमरे में उपस्थित हुआ हुआ व्यक्ति सारे पदार्थों को देखेगा। उससे यदि पूछो कि इन कमरे के सारे पदार्थों को तुम किस प्रकाश से देख रहे हो, तो वह उत्तर देगा कि बीच में जलता हुआ जो दिया है उसके प्रकाश से मैं सारे पदार्थों को देख रहा हूं। ठीक इसके जगह एक घड़ा रख लो, अनेक छिद्र वाला, उस घड़े के अंदर उसी दिए को रख दो, और उस दिए का रोशनी उन घड़े के छिद्रों से बाहर निकलेंगे, तब उस व्यक्ति से पूछो, तुम घड़े के, क्योंकि बीच में घड़ा है इसीलिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सिद्ध होगा कमरे में, तो घड़े के ठीक पूर्व के तरफ के पदार्थों को तुम कौन से रोशनी से देख रहे हो, तब वह उत्तर देगा कि घड़े के पूर्व की तरफ का जो छिद्र है उस छिद्र से निकलते हुए रोशनी से मैं देख रहा हूं। फिर उससे पूछो, दक्षिण की तरफ के पदार्थों को तुम कौन सी रोशनी से देख रहे हो, तो वह यही उत्तर देगा, घड़े के दक्षिण की तरफ का जो छिद्र है उस छिद्र से निकलने वाले रोशनी से मैं दक्षिण की तरफ के पदार्थ देख रहा हूं। फिर उससे पूछ लो कि इस घड़े के पश्चिम की तरफ के पदार्थों को तुम किससे देख रहे हो, उसका उत्तर वही होगा, घड़े के पश्चिम की तरफ का जो छिद्र है उस छिद्र से निकलने वाला जो रोशनी है मैं उस रोशनी से पश्चिम की तरफ के पदार्थों को देख

लो मान लो, पूर्व की तरफ का छिद्र बंद कर दो। मान लो कि पूर्व के छिद्र को बंद कर दो और पश्चिम की तरफ का छिद्र को खुला रखो और उससे पूछो, हम ये पूर्व की तरफ का छिद्र को बंद कर देते हैं और पश्चिम की तरफ के छिद्र को जारी रखते हैं, तो पश्चिम की तरफ के छिद्र से निकलने वाले रोशनी से तुम पूर्व के तरफ के पदार्थों को देख पाओगे कि नहीं? तो उत्तर दे देगा कि मैं देख नहीं पाऊंगा। ये प्रकाश में ये भेद किसके चलते आ गया? घड़ उपाधि के चलते, घड़ छिद्रों के भेद के चलते ये रोशनी में ये भेद आ गया। तब बीच में घड़े के बिना जो रोशनी था, वह एक ही रोशनी, एक ही दिया सबको प्रकाशित कर रहा था। वही दिया, वही रोशनी घट उपाधि के अंदर आने पर वह एक एक छिद्र से निकलने वाले प्रकाश, वह परिच्छिन्न प्रकाश हो गया। अपरिच्छिन्न प्रकाश नहीं होगा, नहीं हो सका। प्रकाश को परिच्छिन्नता किया किसने? तो व्यापक विभू एक प्रकाश को परिच्छिन्न करके अनेक रूप में डिवाइड किया, बांट दिया, विपरीत भाव सिद्ध कर दिया। इसमें हेतु क्या हुआ? तो घट उपाधि हेतु हुआ। लेकिन दिया तो वही है, दिया तो वही है। इसी तरह आप कहते हैं, शब्द को तुम प्रकाशित करते हो तो कौन से प्रकाश से? यदि घट उपाधि न हो, मान लो ये शरीर ही आपका घट है और अंतःकरण वह दिया है, अंतःकरण में जो चेतना की अभिव्यक्ति है वह जलता हुआ रोशनी है, और आपकी जो अनेक जन्मों की कर्म वासना है, वही मान लो कि कर्म वही उस दिए को जलने में बाती का काम करता है, और जन्मांतरीय जो वासना है वही उस दिए को जलने में तेल का काम करता है। ये देख लो, ये तुम्हारे एक रूपक है। शरीर घड़े का काम कर रहा है, अंतःकरण दिए का, मिट्टी का दिए का काम कर रहा है, आपके जन्म जन्मांतरीय शुभ अशुभ कर्म वो बाती का काम करता है, और आपकी जो वासना है वह तेल का काम कर रहा है। इन सब का सम्मिलित रूप में इस घड़े के अंदर दिया जल रहा है। यदि शुभाशुभ कर्म न हो तो मिट्टी का वह दिया नहीं होगा, तो तेल कहां रखोगे और बत्ती जले है? और दिया है और तेल है, बाती न हो, बिना बाती के खाली तेल से क्या दिया जले? और तेल है और बाती नहीं है तो क्या दिया जले? बाती है और तेल नहीं है तो क्या दिया जले? और दिया जल रहा हो, बाहर से हवा चल रही हो, तो क्या दिया जले? उस दिए की रक्षा करने वाला घड़ा भी होना चाहिए। इस दिए की रक्षा करने वाला यह घड़ा जो इस समय कुर्सी के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि इसका नाम ही घड़ा है, और क्योंकि यह घड़ा इसलिए कि नाना छिद्र है, अनेक छिद्र है, और इसके अंदर वो दिया जल रहा है। अब ये घड़ा यदि न होता तो एक ही दिया सभी पदार्थों को एक ही साथ अपनी उपस्थिति से प्रकाशित करता, जैसे कि स्वप्न में होता है। स्वप्न में घड़ा नहीं रहता, स्वप्न में घड़ा काम नहीं करता होता है, यहां ख्याल रखना, लेकिन दिया जलता रहता है। जागृत में घड़े के बिना दिया नहीं जल पाता है, बड़ा आश्चर्य की बात है। जागृत

0: कुदरत में तूफान इतनी आती हैं कि घड़े के बिना दिया नहीं जलता। जागृत में तूफान है, ये जागृत का तूफान आप ही को तो हैरान कर रहा है। ये सारे तूफान जागृत में ही होते हैं ज्यादा, और इसीलिए दिए की रक्षा करने के लिए घड़े की आवश्यकता पड़ती है। और स्वप्न में तूफान इतना नहीं है जितना जागृत में है, वहां भी कुछ तो है तूफान, लेकिन जो तूफान है उसके लिए घड़ा ही आवश्यकता नहीं है, बिना घड़े का भी वह दिया जलता रहता है। थोड़ा हलचल होता है अलग बात है, थोड़ी थोड़ी जो हवा है उससे थोड़ा हलचल होगा दिए में। सुषुप्ति अवस्था में तो कोई बात, कोई हवा ही नहीं है। अब ये समझ लो कि हवा ही नहीं है तो फिर दिया कैसे जल रहा है, तुम लोगों के वैज्ञानिक बुद्धि है ना, इसीलिए प्रश्न कर लोगे विदाउट ऑक्सीजन कैसे दिया जल रहा है, हवा के बिना तो दिया नहीं जलता है, प्रश्न कर सकते हो। और थोड़ा बहुत बुद्धि तो हमारे पास भी है कि तुम ऐसा प्रश्न कर सकते हो, तुम्हारे प्रश्न ऐसा हो सकता है, इतनी जानने की बुद्धि तो हमारे पास भी है। बिल्कुल हवा न हो तो महाराज दिया ही नहीं जल सकता है, तुम प्रश्न कर सकते हो ना। सुषुप्ति अवस्था में कोई हवा नहीं है, वहां कोई तूफान नहीं है और कोई हवा नहीं है, तो तुम प्रश्न करोगे फिर दिया ही नहीं जलना चाहिए वैसी जगह में। तो बोले वहां दिया जले इतना ऑक्सीजन तो है, लेकिन दिया हिले इतना हवा नहीं है। देखो ऑक्सीजन होना अलग चीज है और हवा होना अलग चीज है और तूफान होना अलग चीज है। बात समझ में आई कि नहीं? तूफान यदि उपस्थित हो तो तुरंत उसको रक्षा नहीं करो तो दिया तुरंत बुझ जाएगा, और यदि सामान्य हवा चल रही हो तो उसको रक्षा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिया जलता हुआ भी हिलता रहेगा, हिलता हुआ जलेगा, जलता हुआ हिलता ही रहेगा, लेकिन बुझेगा नहीं। और खाली ऑक्सीजन हो, हवा भी न हो, तो वहां दिया भी जलेगा और हिलेगा भी नहीं। बुझने की तो बात ही छोड़ दो, दिया बुझने के लिए तो तूफान ही चाहिए। तो सुषुप्ति अवस्था में वो ऑक्सीजन उतना प्राण रहता है, उतना जीवनी शक्ति रहती है, लेकिन वहां तूफान नहीं रहता, इसीलिए तो वहां बड़ा शांत है। तो बिना घड़े का स्वप्न में दिखता है सब कुछ पदार्थ, केवल मन ज्योति ही सारे के सारे वासना जन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है। तो एक ही मन ज्योति, वहां अलग अलग इंद्रियां अलग अलग उपाधियों से अलग अलग विषय ग्रहण करते हो, ऐसा नहीं है। स्वप्न में यदि शब्द सुनना हो, सत्संग सुनना हो, तो कान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मन ही उस शब्द को ग्रहण कर लेगा। स्वप्न में कोई रूप देखनी हो तो आंख की आवश्यकता नहीं पड़ती, मन ही उस रूप को भी देख लेगा। स्वप्न में किसी रस को चखना हो तो वहां रसन इंद्रिय जिह्वा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मन ही उस रस को प्रकाशित कर लेगा। स्वप्न में यदि कोई गंध को जानना हो तो वहां नाक की ग्राणेन्द्र की आवश्यकता नहीं है, मन ही उस गंध को ग्रहण कर लेगा, प्रकाशित कर लेगा। स्वप्न में कोई स्पर्श को जानना हो तो त्वचेन्द्र की आवश्यकता नहीं है, वहां मन ही स्पर्श को ग्रहण कर लेगा। गर्म है कि ठंडा है, वहां तो चिंद्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मन ही उसको प्रकाशित कर लेगा। तो अर्थात एक ही मन, वहां घड़े के बिना का मन है वो, जैसे घड़े बिना का दिया कमरे के मध्य में रखा हुआ तो सारे पदार्थों को वो प्रकाशित करता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सारे पदार्थों को एक ही दिया प्रकाशित करता है, कोई ये नहीं कहेगा कि यह पूर्व की रोशनी से प्रकाशित हो रहा है, कोई ये नहीं कहेगा कि पश्चिम की रोशनी से प्रकाशित हो रहा है, कोई ये नहीं कहेगा कि दक्षिण की रोशनी से प्रकाशित हो रहा है, कोई ये नहीं कहेगा कि उत्तर की रोशनी से प्रकाशित हो रहा है। एक ही मध्यस्थ दीपक की रोशनी से सभी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, ये कहा जाता है। परंतु हमने अभी दृष्टांत दिया, बीच में यदि घड़ा रखकर घड़े के अंदर उस दिए के रख दोगे तो तुम कहोगे कि पूर्व के रोशनी नहीं है तो पूर्व का पदार्थ प्रकाशित नहीं हो रहा है, है? उत्तर की रोशनी ठीक है, उत्तर का प्रकाश पदार्थ प्रकाशित हो रहा है, पूर्व की रोशनी ठीक नहीं है क्योंकि पूर्व का छिद्र बंद हो गया, इसलिए पूर्व की रोशनी नहीं है, इसलिए पूर्व का पदार्थ प्रकाशित नहीं हो रहा है। आप लोगों को कुछ नया सा प्रसंग आ रहा है ना विचार करने के लिए, नया एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने, हाँ। और ये विवाद स्वप्न में नहीं होगा, और सुषुप्ति में तो कोई पदार्थ ही नहीं है, सुषुप्ति में तो कोई पदार्थ ही नहीं है, केवल अपने आप का भान वहां होता है, उसका प्रसंग आगे आएगा। मैं पहले इसी एग्जाम्पल पर तुम्हें बता रहा हूं, ये घड़ा है, देह एक घड़ा है, इसमें होने वाले जो इंद्रिय के गोलक हैं और अलग अलग इंद्रियां हैं वह उस घड़े के छिद्र हैं, और इसके अंदर जलता हुआ जो आत्म ज्योति है उस ज्योति की रोशनी अलग अलग इंद्रियों से निकलती है, और ये पंच विषय जो आपको कह रहे हैं, पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध या एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहने वाले पदार्थ की तरह है, और ये अलग अलग इंद्रिया उस घड़े इंद्रियां ये अलग अलग एक ही घड़े के अलग अलग दिशा के छिद्र की तरह समझ लो, तब कान से निकलने वाली जो रोशनी है वो केवल शब्द को तो ग्रहण करेगी।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Siruthondar Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम सुनेंगे एक अद्भुत शिव भक्त की कहानी जिनका नाम चिरतुंडर है। इनका और एक नाम भी है जो है परम ज्योतियार। चिरतुंडर की कथा विचित्र है क्योंकि इसमें भक्ति द्वारा सामाजिक और नैतिक दृष्टि से वर्जित कर्म का प्रसंग है। तमिलनाडु में आज शैवम का अर्थ है मांसाहार की वर्जना। संभवत 1000 वर्ष से अधिक समय पूर्व मांसाहार की ऐसी वर्जना नहीं थी। यह कथा कर्तव्य के लिए भावना की के त्याग की है, अपने आदर्श पर टिके रहने की है, और युग बोध बदल जाने के कारण किसी भी रूप में अनुकरणीय नहीं है। कावेरी नदी के तट पर एक गांव बसा है चिंगाटंकुड़ी। कई शती पूर्व यहाँ के एक आमाध्य कुल में परम ज्योतियार का जन्म हुआ। परम ज्योतियार और चिरतुंडर एक ही भक्त का नाम है। परम ज्योतियार बड़े पराक्रमी और वीर थे। कांची के नरसिंह पल्लव राजा के सेनापति हो बनकर इन्होंने पुलकेशी को युद्ध में पराजित किया और उनकी राजधानी वातापी नगर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सेवानिवृत्त होकर परम ज्योति अपने गांव चिंगाटंकुड़ी में रहने लगे। शिव भक्तों की पूरी निष्ठा से सेवा इनका जीवन क्रम बन गया। प्रतिदिन एक शिव भक्त अतिथि को अन्न खिलाकर ही वे स्वयं भोजन करते थे। शिव ने इनकी परीक्षा लेने के लिए एक लीला रची। एक दिन कोई भी अतिथि न मिला। परम ज्योतियार स्वयं घर से साधु की खोज में निकल पड़े। इस बीच उत्तर भारत के एक वैरागी उनके यहाँ आए। इन्हें घर में न परम ज्योतियार को घर में न पाकर इनके द्वारा बनाए गए गणपति ईश्वर के मंदिर में टिक गए। वैरागी के आगमन की बात सुनकर परम ज्योतियार इन्हें बुलाने आए और भोजन के लिए आमंत्रित किया। वैरागी ने शर्त रखी कि किसी भी परिवार का 5 वर्षीय इकलौता पुत्र यदि काट कर उसके मांस को अगर परोसा जाए तो उनके यहाँ भोजन करना वे अनुकरण करेंगे या पसंद करेंगे। परम ज्योति सीधे पाठशाला गए, अपने एकमात्र पुत्र को बुलाकर बैरागी की इच्छा अनुसार पालक का मांस पकाकर बैरागी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन प्रारंभ करने से पहले बैरागी ने कहा, यदि आपका कोई पुत्र हो तो उसे भी हमारे साथ भोजन के लिए बिठाया जाए। परम ज्योति ने संक्षिप्त उत्तर दिया, वह इस समय यहाँ काम नहीं आएगा। बैरागी ने आदेश दिया, जब तक आपका बालक हमारे साथ बैठकर भोजन नहीं करेगा, हम भी भोजन नहीं करेंगे। दुविधाग्रस्त पति पत्नी दोनों घर से बाहर निकले और गली में खड़े होकर पुकारने लगे, चिराड़ा हमारे बेटे आओ, शिव भक्त तुम्हें भोजन के लिए बुला रहे हैं। अद्भुत चमत्कार हुआ। प्रतिदिन की भांति बालक पाठशाला से दौड़ा चला आया। बच्चे को लेकर अचंभित परम ज्योति जब अंदर गए तो वहां बैरागी दिखाई नहीं दिए। उनके स्थान पर स्वयं भगवान शिव ने पार्वती और पुत्र स्कंद सहित उन्हें दर्शन दिए। प्रश्न यह है कि अपने ही पुत्र को काटकर उसका मांस पकाने की सजा किसे मिली? इसका उत्तर यह है, नरसिंह पल्लव के सेनापति परम ज्योति पुलकेशी को युद्ध में जीतकर उसे वातापी तक खदेड़ने वाले परम सैकड़ों योद्धाओं को मौत के घाट उतारा था। उस समय देश की रक्षा के लिए कर्तव्य कर्म करते हुए उनके मन में दया या करुणा का भाव नहीं जगा। राजा के आदेश का पालन करते हुए उसके औचित्य के बारे में विचार करना या कर्म करने के बाद पश्चाताप करना संभव नहीं था। कर्तव्य के नाम पर सैकड़ों वीरों की लड़ाई को लड़ाई में मारने वाले परम ज्योति के कर्तव्य की परीक्षा की घड़ी तब आई जब उसने शिव भक्तों की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य मान लिया। परीक्षा यह कि क्या पुत्र के प्रति सहज वात्सल्य के कारण कर्तव्य को तिलांजलि देते हैं या किसी भी मूल्य पर उसका पालन करते हैं। चिरतोंडर कर्मवीर सिद्ध हुए जो हर स्थिति में अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे और बिना रोग द्वेष के अपना कर्तव्य पालन करके शिव द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हुए। स्मरण रहे, इस प्रकार की कथाएं कथा मात्र की समझनी चाहिए। समाज कानून नवीन परिस्थितियां इस प्रकार के किसी भी वर्जित कर्म को करने की अनुमति नहीं देते। प्राचीन काल की इस कथा को एक पौराणिक कथा के द्वारा भक्त के असीम त्याग के लिए अतिशयोक्ति पूर्ण ढंग से वर्णित किया गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में इस प्रकार के कर्तव्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन चिरतोंडार या परम ज्योति एक परम भक्त थे, इसलिए वे ऐसे कर्म करने में सफल हुए और शिव को प्रसन्न कर सके। ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thiruneriya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Saivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Om Dhyaye Nityam Ashesam Rajat Girinibham Charu Chandra Putansam Ratna Kalpojvalangam Parasumrigavara Vetihastam Prasannam పద్మాసీనం సమంతాత్ స్తుతమమరగణైర్ వ్యగ్రకృత్యం వసానం విశ్వాద్యం విశ్వవంద్యం నిఖిలభయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం నారాయణం పద్మభవం వశిష్టం శక్తిం చ తత్పుత్ర పరాశరం చ వ్యాసం సుకం గౌడపదం మహంతం గోవింద యోగీంద్రమథాస్య శిష్యం శ్రీ శంకరాచార్యమథాస్య పద్మ పాదం చ హస్తామలకం చ శిష్యం తంత్రోటకం వార్తికకారమన్యాన్ అస్మద్గురుం సంతతమానతోస్మి విశుద్ధ జ్ఞానదేహాయ త్రివేది దివ్య చక్షుసే శ్రేయః ప్రాప్తి నిమిత్తాయ నమః సోమార్ధధారిణే ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః.

कर रक्षमा। ओम ओम ओम। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित मातुश्री बेलाबेन मूलजी भाई विश्राम दहिया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत आदिगुरु शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी इस विषय पर विचार चल रहा है। चतुर्दश दिवसीय यह श्रृंखला 14 दिवसीय, तो विगत 16 तारीख से शुरू हुआ था और आज अंतिम दिन है और स्तोत्र भी लगभग आज अंतिम है। यूं तो इस स्तोत्र पर विगत 4 वर्षों से विचार चल रहा है, अभ्यास के लिए श्लोक नंबर है शिवानंद लहरी का 97। आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव के प्रति कौन सा भाव, कैसा भाव व्यक्त करते हैं, तो किस प्रकार का भाव व्यक्त करते हैं, ये स्तोत्रों से पता चलता है। या भक्तों को कैसा भाव रखना चाहिए, तो ये पता चलता है। प्रचरत्यभित प्रगल्भ वृत्या मदवान्ने समनः करी गरीयान् परिगृह्य नयेन भक्तिरज्वा परमस्थाणुपदम् दृढ़म् नयामम् सर्वालंकारयुक्ताम् सरलपदयुताम्

अन्यकां त्वं गृहाण इदं ते युक्तं वा परमशिवकारुण्यजलधि गतौ तिर्यग्रूपम् तव पदशिरो दर्शन दिया। हरि ब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि चरन्तौ श्रमयुतौ कथं शम्भो स्वामिन् कथय मम वेद्योऽसि पुरतः। स्तोत्रेणालमहं प्रभ

0: நம்ரிஷா. தேவா விரிஞ்சாதய ஸ்துத்யானாம் கணனா பிரசங்க சமயே த்வாமக்ரகண்யம் விதுஹு மாஹாத்மியாக்ரவிசாரண ப்ரகரணே தானாது சஸ்தோமவத் தூதாஸ்த்வாம் விதுருத்தமோத்தம ஃபலம் சம்போ பவத் சேவகஹ ஸ்தோத்ரேணாலமஹம் ப்ரவத்ஸ்மி நம்ரிஷா. தேவா விரிஞ்சாதய ஸ்துத்யானாம் கணனா பிரசங்க சமயே த்வாம் அக்ரகண்யம் விதுஹு மாஹாத்மியாக்ரவிசாரண ப்ரகரணே தானாது சஸ்தோமவத் தூதாஸ்த்வாம் விதுருத்தமோத்தம ஃபலம் சம்போ பவத் சேவகஹ சம்போ பவத் சேவகஹ. துவிராவிருத்தி கிரந்த சமாப்தி சூச்சகா. ஐசி பரம்பரா ஹை. அந்த மே கிசி எக் வாக்கிய கா புனராவிருத்தி கியா ஜாதா ஹை தோ வோ பிரசங்க கி சமாப்தி கா சூச்சக ஹை. तब आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव के सामने ये भाव व्यक्त कर रहे हैं. लगभग इस श्लोक और इससे पहले का जो श्लोक है समानार्थक ही है, भाव दोनों का समान है. वहां पर भी उस श्लोक में भी मन को हाथी कहा था और इस श्लोक में भी मन को हाथी ही कहा. उस श्लोक में भी हाथी मदवान है और इस श्लोक में भी हाथी मदवान ही है. लेकिन क्यों शंकराचार्य जी ने अचानक उस श्लोक में उस मदवान हाथी के लिए भक्ति रूपी जंजीर का प्रयोग करने के लिए कहा और इस श्लोक में भक्ति रूपी रस्सी को प्रयोग करने के लिए कहा? वस्तु तो एक ही है, वहां पर भी भक्ति जंजीर भक्ति का ही है और यहां पर भी रस्सी भक्ति की ही है. सामान्य व्यवहार में लगता है कि जंजीर थोड़ा, जंजीर जो शब्द प्रयोग किया है काफी मजबूत है, काफी बलवान तगड़ा बंधन है वो जंजीर। शंका नहीं कि साधारण प्रयत्न से उसको तोड़ा जा सके। रस्सी के बारे में वो भाव नहीं बनता है, रस्सी के बारे में वो भाव नहीं बनता जो भाव जंजीर के बारे में बनता है। तो जंजीर बलवान है, मजबूत है, और जंजीर की अपेक्षा रस्सी, सभी के दिमाग में यह आता है कि रस्सी जंजीर की अपेक्षा कमजोर रहता है। सामान्य बंधन के रूप में रस्सी को लिया जाता है और विशेष बंधन के रूप में जंजीरों को लिया जाता है। जब बंधन विशेष होता है तब जंजीर का प्रयोग करना पड़ता है। हाथी ज्यादा ही उन्मत्त हो तो जंजीर का ही प्रयोग करना पड़ेगा, और हाथी सामान्य होगा तो रस्सी से भी काम चल जाएगा, लेकिन बांधना तो पड़ेगा। वो आप लोग तो बंबई में रहते हो, ये हाथी का जो समूह है क्या तूफान करते हैं, क्या नुकसान करते हैं, इस बात को आप लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, कोई भान नहीं है। ये तो हम पहाड़ी और जंगलियों को पता है। आसाम और नेपाल के पूर्वी प्रांत अत्यधिक हाथी उधर पाया जाता है, और हाथी झुंड के झुंड चलते हैं, तो झुंडे के झुंड हाथी चलते हैं। ये जिस गांव में बस्ती में घुस जाए ना, अब गांव में तो पक्के मकान तो होते नहीं है, लकड़ी के घास फूस के मकान होते हैं, सब उजाड़ देते हैं। बस्ती के बस्ती उजाड़ देते हैं, एक घर नहीं दो घर नहीं। और ये फिर घुसते हैं तो एक दो नहीं भाई, तीस तीस चालीस चालीस का झुंड एक साथ घुसता है। अब हल्ला करते हुए घुसते हैं, चिंगाड़ते हुए घुसते हैं और उजाड़ देते हैं, पूरा का पूरा बस्ती उजड़ जाता है। इसलिए ये हाथी खुला छोड़ने के पशु तो है नहीं, अब फिर भी बांधे तो कितनी को बांधे, एक दो हो, जंगलों में हजारों हाथी हैं, है ना, नेपाल और आसाम एक ही रेंज है वो। आज सुबह कल सुबह आसाम गुवाहाटी में भी 6 स्केल का भूकंप आ गया। वो एक ही रेंज है वो, है? नेपाल में जो आया था 8 रिएक्टर स्केल का था, आज सुबह गुवाहाटी में आया 6 रिएक्टर स्केल का था। और इधर अल्मोड़ा की तरफ भी आ गए, शहमाजी के दिन कश्मीर में भी आ गए, तो 2-3 जगह एक ही दिन में आ गए। वो रेंज वही है, पहाड़ी रेंज, तो छोड़ना ही पड़ता है। तो लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं हाथी को भले ही जंगल में छोड़ दो, ये मन को तो छोड़ नहीं सकते, इसको तो जंगल में क्या शहर में भी नहीं छोड़ सकते, ये तो जहां भी रहेगा वही तूफान करेगा, वही उजाड़ेगा, ये इसका नियंत्रण तो हर हालत में होनी ही चाहिए। ज्यादा ही उन्मत्तता है तो जंजीर से बांधो और थोड़ा कम है तो रस्सी से बांधो, इतना ही फर्क है। बांधो तो जरूर है। शंकराचार्य कहते हैं यहां प्रचरत्यभिता प्रगल्भवृत्त्या शिवजी के लिए संबोधन है परमा परमात्मा। हे परमात्मा, परम आत्मा परमात्मा अर्थात सर्वशक्तिमान, ये सब मदवान मनः करी, ये सब मदवान मनः करी, मदवान ये सब मनः करी, मद से उन्मत्त हुआ हुआ मन रूपी हाथी, करी माने हाथी, कड़ी नहीं समझ लेना फिर। और जो री उच्चारण नहीं कर, रा उच्चारण नहीं कर सकता है तो कड़ी ही कहेगा वो, तो करी कैसा है ये प्रचरति अभिता, चारों तरफ पहुंच जाता है। अभिता माने चारों तरफ, प्रचरित ही घूमता ही रहता है। इस मत वाले हाथी के लिए कहीं वीजा नियम भी लागू नहीं होता इमिग्रेशन में। तो पहुंच जाएगा अमेरिका, पहुंचने के लिए इसको वीजा लगेगा है? परितः प्रचरित ही, अभितः प्रचरित ही, चारों तरफ घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। जहां सूर्य नहीं पहुंचता वहां पर भी पहुंच जाता है। इसलिए कहा है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कभी क्या पहुंचेगा, ये मन पहुंचेगा तभी ना कभी पहुंचेगा है? कभी उपलक्ष्य मन, मन पहुंचेगा तभी कभी पहुंचेगा। तो सूर्य जहां नहीं पहुंचते हैं वहां पर भी ये मन करी प्रचरती पहुंच जाता है। और दूसरी बात कह रहे हैं कैसे पहुंचता है, प्रगल्भ वृत्तिया प्रचरती, बड़ा साहसी पूर्वक, साहस पूर्वक विचरण करता है। प्रगल्भ शब्द का अर्थ होता है साहस, डर नहीं उसको, किसी का डर नहीं, कहीं डरता नहीं है वो है। प्रगल्भ वृत्तिया साहस पूर्वक प्रचरति, गरीयान।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami நிஷ்தானந்த் ஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
3: ரிஷம் வாசம் பிரபித்தீ

हृदय से मनसो वादिदृणम् बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्य अस्पदिः सन्नो भवतु भुवनस्य अस्पदिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल से विचार हम लोग वेदांत परिभाषा के ऊपर कर रहे हैं। वेदांत की ब्याज से दर्शन की समीक्षा चल रही थी, क्योंकि वेदांत दर्शन कोटि में है, इसलिए इसके पूर्व सारे दर्शनों के संस्कार बहुत जरूरी है। द्वादश दर्शन स्वीकृत है, प्रथम दर्शन चार्वाक दर्शन, द्वितीय जैन दर्शन आता है, तीसरे नंबर पर है शौत वैभाषिक, चौथे नंबर पर शौत्रांतिक, पांचवें पर योगाचार और छठवां है माध्यमिक। ये छह दर्शन नास्तिक का कोटि में माने जाते हैं, और आगे जो षड दर्शन है जिनको आस्तिक कहते हैं। आस्तिक नास्तिक का विवेचन इतने मात्र से है कि जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं उनको तो कह दिया आस्तिक, जो वेद के प्रामाण्य को नकारते हैं अपनी मति बुद्धि युक्ति तर्क वितर्क से ही बात को समझते समझाने का प्रयास करते उन्हें नास्तिक कोटि में रखा है। वैसे पाणिनीय सूत्र के आधार पर एक सूत्र अस्ति दिष्टम मतिज, इसका तात्पर्य है अस्ति पर लोके मति यस्य स आस्तिकः, जिसकी परलोक में मति मतलब बुद्धि है निश्चय करता है वह आस्तिक। ऐसा आस्तिक नास्तिक शब्द का निर्वचन पाणिनीय व्याकरण से होता है, पर ये आस्तिक नास्तिक की परिभाषा पूरा पूरा इस सब जगह घट नहीं पाता है, क्योंकि ऐसा माने तो कुछ परलोक की सत्ता आस्तिक में भी नहीं मानते, इसलिए अंत में कहना पड़ता है कि वेद प्रामाण्य को स्वीकारने वाले आस्तिक, नहीं स्वीकारने वाले नास्तिक। आस्तिक कोटि में सर्वप्रथम न्याय वैशेषिक ये दो दर्शन आए, इसके बाद सांख्य और योग, इसके बाद पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा आज इसको हम कहते अध्वर्यमांसक, उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते। अध्वर शब्द का अर्थ है यज्ञ, और इसके जो वेदांत परिभाषा के निर्माणकर्ता उनका नाम भी क्या है, धर्म राजा ध्वरिंद्राचार्य। अध्वर मतलब यज्ञ, तो ये कुल मिला के छह षड आस्तिक दर्शन हो गए। इनके कर्ता कौन है ये भी आपको वैसे प्रायः तो मालूम ही होगा। चार्वाक दर्शन के कर्ता के विषय में ये प्रसिद्धि है, किंवदंती है कि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है वे ही चार्वाक दर्शन के वक्ता है। अब बृहस्पति ने ऐसा दर्शन क्यों चलाया, मन में इस कुतूहल शंका होगी, देवताओं के गुरु बृहस्पति। कहते हैं कि जब शुक्राचार्य से असुरों से कुछ अनबन हो गई
मतभेद होने के बाद शुक्राचार्य जी तपस्या के लिए चले गए, छिप गए असुरों से बिल्कुल दूर। उस समय बृहस्पति जी ने शुक्राचार्य जी का रूप धारण करके, मतलब थे तो बृहस्पति जिसको आप डुप्लीकेट कहते हैं ना, शुक्राचार्य का रूप धारण करके, छद्म रूप से शुक्राचार्य का रूप लेकर असुरों को यह विद्या उपदेश किया, वही चारवाक दर्शन। फिर आसुरी शक्ति जब पराजित हो गई, अब गुरु के पास आए तो गुरु तो है ही नहीं, वो तो अंतर्धान, वो तो बृहस्पति थे, शुक्र थे नहीं। चारों तरफ खोजा तो मालूम पड़ा शुक्राचार्य तो तपस्या कर रहे। कहा गुरु जी आपने जो उपदेश दिया उससे हम लोग तो पराजित हो गए, मारे गए, देवता लोग जीत गए। शुक्राचार्य ने कहा मैं कहां कुछ उपदेश दिया, अरे तुम लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, उपहास किया, मैं तब से एकांत में बैठकर भजन कर रहा, तपस्या कर रहा। कहा जाने दो शिष्यों को, जब उनको हमारी जरूरत नहीं तो मैं क्यों उनके पास जाऊं, मैं तो कभी गया नहीं, उपदेश किया नहीं तुम लोगों को। अब हुआ कि भाई तब किसने उपदेश दिया, तो मालूम पड़ा कि बृहस्पति जी शुक्राचार्य का रूप धारण करके जो उपदेश दिए वही चारवाक दर्शन कहलाता है, जिसका मूल तो आप जानते ही हैं। इनके यहां थोड़ा पदार्थों का भी चिंतन कर लीजिए। चारवाक दर्शन में केवल चार ही भूत हैं, पांच भूत नहीं मानते, पृथ्वी जल तेज वायु, चार भूत मानते हैं। आकाश को भूत नहीं मानते, पदार्थ नहीं मानते। इन चारों को लेकर उनका विचार चलता है और आत्मा के स्वरूप के विषय में इनका कहना है कि जिस प्रकार से ये एक आधुनिक दृष्टांत दें, तो कोई गाड़ी है, उस गाड़ी में इंजन, इंजन में पेट्रोल डाल दिया, तो पेट्रोल डालते ही गाड़ी में चेतना आ गई, गाड़ी आगे चलने लग गई। इंजन के साथ जब तक पेट्रोल डीजल का संबंध नहीं तब तक गाड़ी चल नहीं सकती। ऐसी चार भूतों के एक विशेष सम्मिश्रण का नाम है चैतन्य, वही आत्मा है। पुराना दृष्टांत वो शराब का देते हैं कि शराब जैसे कि ये जो है इन्हीं पदार्थों से तैयार होता है और उसमें जैसी मादकता है, ऐसे चार भूतों के विशेष सम्मिश्रण से जो चेतना आती है वही चैतन्य, वही आत्मा है जो शरीर तक ही सीमित है। शरीर पाद के बाद मोक्ष हो जाता है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। इसलिए शरीर को बढ़िया स्वस्थ रखो, जैसे भी रखना पड़े, ज्यादा भूत भविष्य का चिंतन नहीं करना, इतना कम बात नहीं है। आदमी कई भूत में परेशान, कई भविष्य की चिंता में परेशान रहता है, पर ये कहता है कि बस वर्तमान में रहो, तो शरीर ही नहीं क्या आत्मा है, शरीर पाथ ही मोक्ष है, चार भूत ही पदार्थ है, ये तीन बात याद रखना, आगे इसका खंडन मंडन आता रहेगा। और केवल प्रत्यक्ष इनके यहां प्रमाण है, इनके यहां केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, वेदांत के यहां तो षड प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि, छह प्रमाण वेदांति मानते। पर ये चारवाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है, शरीर को आत्मा मानता है, शरीर पात को मोक्ष मानता, और चार भूतीन के यहां तत्व पदार्थ है। चारवाक दर्शन के तर्क बहुत ही प्रसिद्ध है, ये ग्रंथ है तत्व पप्लव सिंह, उसमें इतने गजब गजब के तर्क है, आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सामान्य तर्क नहीं, बहुत ही प्रकृष्ट तर्क है।
जनश्रुति है, उसी तत्वप्लव सिंह के तर्कों को लेकर के खंडन का श्रीहर्ष महाकवि ने द्वैतवादियों का बहुत कुछ खंडन किया। अस्तु, कुछ भी हो, चार्वाक के बाद अब आगे बढ़ते हैं जैन दर्शन। इसका विशेष कर ये भी मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक आदि की तरह से परमाणु से सृष्टि को मानते हैं। जैसे न्याय कहता है कि परमाणु में स्पंदन हुआ, एक परमाणु दूसरे से जुड़ते हैं, द्वैणुक, त्रिणुक, चतुर्णुक, इस क्रम से सृष्टि बनती है। ऐसे जैन दर्शन की मान्यता है कि परमाणुओं के पुंज से ही ये भूतों का निर्माण होता है। इनके यहां भी बड़ा गंभीर चिंतन आत्मा का है। इनके यहां मोक्ष के विषय में एक दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार से कोई सूखी तुमड़ा हो, लौकी, सूखी लौकी के ऊपर आप मिट्टी का लेप कर दें, जल में डाल दें, वह लौकी नीचे चली जाती है। जैसे ही वह मिट्टी धीरे धीरे घूल करके वह लौकी से अलग हो जाती है, अब वह जो सूखी लौकी ऊपर आती है। तो सात तेन ऊर्ध्व गमनम मोक्ष है, जिसको कहते लोकालोक आकाश। तो सात तेन मतलब निरंतर ऊर्ध्व गमन ही जैन दर्शन का मोक्ष है। और ये जो मल है, ये आणवादी बहुत सारे मल है, ये मल जो जैन दर्शन प्रयुक्त साधनाएं हैं, तप्त शिला पर आरोहण है, केश लुंचन, ये बहुत साधनाएं, उपवास है, व्रत है, उसके द्वारा जब मल नष्ट होता है तब जीवात्मा पवित्र होकर सात तीन ऊर्ध्व गमन करता है। ये इनका मोक्ष है। इनका विशेष प्रसिद्ध है सप्त भृंगी नय। सप्त भृंगी नय जरा विचार कर ले, कल संक्षेप से हम लोगों ने सुना था। पहला है अस्ति च, किसी ने पूछा आत्मा है, पदार्थ है, कहेंगे अस्ति च है। फिर कहेंगे नास्ति च, दूसरे दृष्टि से विचार करे तो नहीं भी, ये वस्तु दिखाई दे रहे तो बिल्कुल है, परंतु कुछ काल के बाद नष्ट होने वाली है तो कहेंगे नहीं भी है। फिर कहते अस्ति च नास्ति च, स्वरूपतः न होने पर भी प्रातीतिक रूप से है, इसलिए अस्ति च नास्ति च। टीवी के स्क्रीन पर वस्तु प्रतीति मात्र से है, उपलब्धि न होने से नहीं है। आप टीवी के स्क्रीन पर सारा नजारा देखते हैं, बहुत सुंदर लगता है, तो वह है भी नहीं भी है, प्रतीत हो रहा इसलिए अस्ति च है, उपलब्धि नहीं हो रही मतलब नास्ति च नहीं है। ये तीसरी कोटि है। चौथा

बौद्ध दर्शन में वेदांत में पहले देख लीजिए अंतर क्या है। जहां वेदांत दर्शन मानता है कि बिना अधिष्ठान के भ्रम नहीं होता है, ये कहते बिना अधिष्ठान के भ्रम हो जाता है, ये अंतर है। निराधिष्ठान भ्रम सनुत्पत्ति, ये बात वेदांत परिभाषा में आएगी बार बार। बिना अधिष्ठान के भ्रम नहीं होता, जब तक रस्सी नहीं तब तक सांप की भ्रांति नहीं होगी। ऐसे अधिष्ठान जो ब्रह्म है, ब्रह्म सत्ता पर ही भ्रम हो रहा, तो साधिष्ठान भ्रम तो वेदांत मानते, ये निरधिष्ठान भ्रम मानते। दूसरा अंतर यह है कि ये लोग यह मानते हैं कि शून्य आत्मा है, वेदांत चैतन्य रूप आत्मा मानता है। ये दो मान्यताएं न हो तो देखा जाए तो मौलिक रूप से वेदांत बौद्ध में आप अंतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे भी जगत को सांवृत्तिक आविद्यक मानते, वेदांती भी आविद्यक मानते। सांवृत्ति बोलता विद्या को, उनके दर्शन का एक सांवृत्तिक शब्द है, ये जगत सांवृत्तिक है, वेदांती भी आविद्यक ही मानता। तो बौद्ध दर्शन के चार पार्ट हैं। प्रथम है वैभाषिक, दूसरा है सौत्रांतिक, तीसरा है योगाचार, पांचवा है माध्यमिक, चौथा है माध्यमिक। चार हो गए ना। वैभाषिक सबसे स्थूल दर्शन इनके यहां। वैभाषिक कहता है कि जगत भी प्रत्यक्ष रूप से भाषित हो रहा, बाहर भीतर दोनों के सत्ता को वैभाषिक ये दार्शनिक मानते हैं। और जो सौत्रांतिक है, ये खासकर गौतम बुद्ध के जो सूत्र हैं लंकावतार सूत्र, उसको मानकर चलने से दूसरे को सौत्रांतिक कहते हैं। पर यह भी शून्य आत्मा मानता है, शून्य जगत मानता है, सर्वम दुखम दुखम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम मानता। जो चार इनके वहां वाक्य हैं, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, सर्वम शून्यम शून्यम, ये चार बातों को ये चारों ही मानते हैं। जैसे अपने यहां चार महावाक्य है ना, ऐसे चार इनके यहां महावाक्य के समान है। ये प्रपंच कहती है बस दुख ही दुख है, ये तो सुख बुद्धि होने से हमें दुख की प्रतीति नहीं। जिस प्रकार ये कड़वा कड़वा जो सिगरेट की का धुआं है, ये शराब है, सड़ा हुआ जल कितना कड़वा है, इसमें भी धीरे धीरे स्वाद को विकसित कर लेती, तो शराब कितनी अच्छी लगती पीने वाले को। ये जो धुआं है ना, कड़वी धुआं, ये धुआं भी सिगरेट की बहुत अच्छी लगती पीने वाले को, बिना पिए रह नहीं सकता। जिसने कभी नहीं पिया उसके लिए बहुत कड़वी धुआं है धुआं, पर धीरे धीरे स्वाद को विकसित कर लेने से मजा आनंद आता। ऐसे ही सर्वम जगत दुखम दुखम, दुख ही दुख है। अज्ञानी जीव ने इसमें अपने मन बुद्धि से अज्ञान से सुख को विकसित कर लिया, सुख की मान्यता बना लिया। सुबह से लेकर सोने तक इस शरीर की चाकरी करनी पड़ती है कि नहीं, क्या इसमें सुख है। उठो, इसको मंदन ब्रश कराओ, स्नान कराओ, चाय नाश्ता कराओ, फिर कहता थोड़ा आराम कराओ, भोजन कराओ, फिर सुलाओ, फिर घुमाओ, इसका एक के बाद एक डिमांड बना रहता है, इसकी मांग कभी पूरी होती नहीं। इसलिए बौद्ध दर्शन का था सर्वम दुखम दुखम। दूसरा वाक्य है सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, प्रत्येक पदार्थ का अपना एक लक्षण है, स्वभाव है। जैसे घट है, उसमें पदार्थ, उसमें द्रव्य रखे जाते हैं, जल जल का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव जलाना है, तो प्रत्येक पदार्थ

0: एक अपना स्वभाव है, स्वलक्षण है। तीसरा है सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। क्षणिकम मतलब सारे पदार्थ क्षण ध्वंसी है, क्षण भर में परिवर्तित हो रहे। दृष्टांत देते हैं गंगा का या दवाई का। जब आप गंगा जी में खड़े होकर संकल्प पढ़ते हैं, गंगा का स्नान कई तरह होता है। एक देव स्नान है, दूसरा मनुष्य स्नान है, तीसरा पशु स्नान है। पशु स्नान होता है गर्मी के दिनों में। बस गए कि मंत्र नहीं, संकल्प नहीं, विचार नहीं, बस ठंडा जल है। पशु की तरह से गर्मी शांत करने के लिए कूद पड़े, उसको कहते पशु स्नान। मनुष्य स्नान है कि मनुष्योचित कामना की पूर्ति के लिए संकल्प करके, है ना, अमुक वत्सर, अमुक दिन, अमुक नामा हम, अमुक कामना की पूर्ति के लिए गंगा स्नानम करिष्य, संकल्प करके जल छोक स्नान करती है, तो मनुष्य स्नान है। तीसरा है जो उत्तम कोटि का देव स्नान। सारे संकल्प विकल्प शून्य मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से ये साक्षात मां है, पाप ताप को दूर करके हमें तत्व बोध कराए, इस भावना से करे वह देव स्नान, देवत्व का आधान। देव स्नान होता है चार से छह तक, मनुष्य स्नान है छह से आठ, और आठ के बाद जो स्नान है ना वो पशु स्नान। तो देखो जिस प्रकार से गंगा जी में खड़े होकर आप संकल्प पढ़ते ना, संकल्प पढ़ के छोड़ने तक गंगा की कई धारा निकल गई। पर क्या कहते, सेयम गंगा, यही गंगा है, वो गंगा नहीं। क्षण भर में हजारों गंगा जी की धारा निकल गई, फिर भी क्या कहते, वही गंगा। ऐसे ये पूरा संसार क्षण क्षण भर में बदल रहा। क्षण का प्रत्यक्ष न होने से हम लोग कहते हैं स्थिर है। तो सर्वम क्षणिकम क्षणिकम ये उनका कथन है। अंतिम है सर्वम शून्यम शून्यम। ये पूरा संसार शून्य रूप है। दृष्टांत देखते हैं जिस प्रकार एक केला है, केला के स्तंभ को जब आप छीलते हैं तो कुछ नहीं, शून्य रूप होता। तो बौद्ध दर्शन की जो यह मान्यता है, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम स्वलक्षम स्वलक्षम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम शून्यम शून्यम, बौद्ध में जो योगाचार है, जो क्षणिकत्व को मान के चलता है, योगाचार वेदांत के करीब है। योगाचार सांख्य आगम वेदांत चार, ध्यान रखना। योगाचार जो बौद्ध का, सांख्य आगम वेदांत, ये चारों आत्मा को स्वयं प्रकाश मानने वाले हैं, स्वयं ज्योति रूप मानने वाले हैं। पर अंतर यह है कि योगाचार उस स्वयं प्रकाश आत्मा को क्षणिक मान लेता है, बस इतना ही भेद पड़ जाता है वेदांत से। जो योगाचार है आत्मा के सत्ता को स्वयं प्रकाश तो मानता, पर क्षणिक मान लेता, वो अभी क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा। जब क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा तो एक शंका होगी कि फिर स्मृति कैसे बनेगी। जिस प्रकार आप आज यहां बैठकर स्मरण करते हैं कि कल हमने स्वामी प्रेमपुरी आश्रम में प्रातः काल यह बात सुनी थी, कल आज यह सुन रहा हूं, तो कल का स्मरण करने वाला आज तो रहा नहीं, क्षण क्षण में बदल गया। जो कल आत्मा थी, 24 घंटा पहले जो 8 बजे जो आत्मा सुनी, वो स्वयं ज्योति आत्मा तो बदल गई, दूसरी आत्मा क्षण क्षण में बदल गई। तो फिर स्मृति नहीं होनी चाहिए, स्मृति के लिए एक स्थायी वस्तु चाहिए ना। जिस पर संस्कार रहे। तो उत्तर देते हैं योगाचार वाले कि देखो भाई, वो नष्ट तो हो गया क्षण भर में, पर अपने संस्कार को दूसरे को दे देता है। जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर आप देखते हैं कि एक मध्य में लहर उठती है, वह लहर दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरह से अंतिम लहर किनारे पहुंच जाती है। हालांकि लहर नष्ट होने के पूर्व दूसरे को दे देती अपना पावर। ऐसी क्षणिक आत्मा भले ही नष्ट होता रहे, पर वह अपना जो संस्कार दूसरे को देता हुआ नष्ट होता है, इसीलिए कोई दोष नहीं। पर इसका भी आगे खंडन मंडन चलता रहेगा, ये तो आपको संक्षेप से हमने बताया। अब आगे बढ़ते हैं आस्तिक दर्शन की तरफ, जो न्याय दर्शन है और वैशेषिक, दोनों समानांतर दर्शन है। समानांतर मतलब कि दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, अंतर इतना ही है कि वैशेषिक एक विशेष पदार्थ को लेकर चलता है, इसलिए इसको वैशेषिक कहते। और न्याय दर्शन में विशेष का इतना महत्व नहीं है, वो दूसरे मंत्र भूत कर लेता है। इनके यहां भी जो पदार्थ है, ये खासकर न्याय वैशेषिक को हम लोग पदार्थवादी कहते हैं, ये दर्शन है मेटरवादी पदार्थवादी। इन्होंने भावाभाव पदार्थ पर बड़ा गंभीरता से विचार किया है, भाव और अभाव। भाव का मतलब होता है कि ये जो भावभूत पृथ्व्यादि जो देख रहे हैं, ये कैसे बना और कब तक इनकी सत्ता रहती, कैसे विलय होता है। ये परमाणु से ही सृष्टि का विस्तार मानते, ये भी पंचभूतों को स्वीकार करते। इनके यहां जो जीव है, वो जीव का ईश्वर से एकता कभी नहीं होता। ईश्वर अनंत अचिंत शक्तिवान है, नित्य ज्ञानवान ईश्वर इनके यहां है। न्याय वैशेषिक में अनित्य ज्ञानवान आत्मा है। हम लोग आत्मा का लक्षण क्या करते, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये बोलते हैं ना, ज्ञान स्वरूप नित्य आत्मा है। और ये लक्षण करते अनित्य ज्ञानवान ज्ञानाधिकरणम आत्मा।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: Dear listeners of shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 5.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाथ सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

नारायणाय नमः। ओम समस्त भुवन व्यापिने नमः। ओम समृद्धये नमः। ओम सततोदिताय नमः। ओम सूक्ष्मात् सूक्ष्मतराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूक्ष्म स्थूलत्ववर्जिताय नमः। ओम जह्नुकन्या

नमः ओम दानवांतकाय नमः ओम चतुर्वक्त्राय नमः ओम चक्रधराय नमः ओम पंचवक्त्राय नमः ओम परंतपाय नमः ओम विश्वस्यायतनाय नमः ओम मरियाय नमः ओम मंदारुजन वत्सलाय नमः ओम गायत्री वल्लभाय नमः ओम गार्ग्याय नमः ओम गायकानुग्रहोन्मुखाय

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: अंतरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमिषतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमस्मिन्स्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरस्तधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्।
1: दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के चौथे श्लोक की व्याख्या है, चतुर्थ श्लोक की व्याख्या चल रही है। श्लोक है,
0: नाना छिद्रघटोदर स्थित दीप प्रवाभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुराधिकरण द्वारा बहिस्पंदते।

नमइदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वृत्ति ज्ञान की प्रक्रिया बता रहे हैं। हम जब जगत के पदार्थों को देखते हैं तो ये पदार्थ दिखते हैं इसलिए हम देखते हैं, ये बात नहीं है। इन पदार्थों को हम देखते हैं इसलिए दिखते हैं, दो चीज हैं। पहली बात, पदार्थ दिखते हैं इसलिए हम देखते हैं, ये सही है कि हम देखते हैं इसलिए ये दिखते हैं, ये सही है। वेदांत सिद्धांत विज्ञान ये कहता है कि पदार्थ दिखते हैं इसलिए हम देखते हैं, और वेदांत सिद्धांत ये कहता है कि हम देखते हैं इसलिए दिखते हैं। ये दोनों में बड़ा अंतर है। पदार्थ दिखते हैं और हम देखते हैं, इसमें पहले पदार्थ की सत्ता और स्फूर्णता सिद्ध हो तब हम देखने वाले, हम दूसरे नंबर में होंगे, पहले नंबर में पदार्थ होगा। तो पदार्थ दिखाई पड़ने में पदार्थ में प्रकाश होना चाहिए तभी पदार्थ दिखेगा, और दूसरे नंबर में हम देखते हैं तभी पदार्थ दिखते हैं। तो ये हुआ कि प्रकाश हमारे में है इसलिए पदार्थ दिखते हैं। ये दो वाक्यों में बिल्कुल विरोधाभास है। पहले वाक्य, पदार्थ दिखाई पड़ते हैं तब हम देखते में प्रकाश पदार्थ में सिद्ध होगा। दूसरे वाक्य में, हम देखते हैं तभी पदार्थ दिखते हैं, इसमें प्रकाश हमारे में सिद्ध होगा। तो वेदांत आत्मगत प्रकाश मानता है, पदार्थगत प्रकाश नहीं मानता, यही बात चल रहा है। आप कैसे देखते हो पदार्थ को, तो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जैसे घटोदर स्थित, घड़े के अंदर नाना छिद्र घटोदर स्थित, अनेक छिद्रों से युक्त हुआ हुआ जो घड़ा, उस घड़े के अंदर यदि दीपक जलाकर, दिया जलाकर कोई रख देता है घड़े के अंदर, तब मूल रूप में बाहर से देखते समय में दिए का स्वरूप तो नहीं दिखेगा, दीपक का स्वरूप तो नहीं दिखेगा, परंतु उन छिद्रों से प्रकाश बाहर निकलते हुए दिखेंगे, और उन छिद्रों से जो प्रकाश बाहर निकलते हैं तब उन प्रकाशों से बाहर के पदार्थ प्रकाशित होते हैं, तब फिर हमको दिखता है कि हमने पदार्थ देखा। अब देख लो ये दृष्टांत, बड़ा ध्यान देकर सुनना। दीपक यदि घड़े के अंदर न हो, बाहर रखी हुई हो खुले में, तब उस दीपक से निकलने वाली रोशनी से उस स्थान के सारे पदार्थ प्रकाशित होते हैं और दृष्टा को ज्ञात होता है, और वो ये कहता है कि मैं इस सारे पदार्थों को देखता हूं और जानता हूं। कैसे देखा, तो बोले दिए की रोशनी से मैंने देखा। कि सभी लोग, सभी को अनुभव है और सभी यही बात कहते हैं, लेकिन वही दिया अनेक छिद्र से युक्त हुआ हुआ घड़े के अंदर जल रहा हो और उस दिए की रोशनी अलग अलग छिद्रों से बाहर निकल रही हो, तो वहां रोशनी का भी भेद सिद्ध हो जाएगा, और ये कहेगा कि पूर्व के तरफ के पदार्थ मैं पूर्व के छिद्र से निकलते हुए रोशनी से देख रहा हूं, पश्चिम की घड़े के पश्चिम की तरफ की पदार्थ
घड़े के पश्चिम की तरफ के छिद्रों से निकलते हुए रोशनी से मैं देख रहा हूं। तो सामान्य व्यक्ति यही तर्क देगा कि घड़े के पश्चिम की तरफ के छिद्र से निकलने वाले रोशनी से पूर्व के तरफ के पदार्थ प्रकाशित नहीं होते, यही तर्क देगा वो। आप लोग भी यही तर्क दोगे, बोलो। थोड़ा सा विचार करने का ये प्रसंग आ गया है। कमरे के बीचों बीच घड़ा रखा हो छिद्रों वाला, और उस घड़े के अंदर, पहले तो आप सामान्य बात समझ लो, कमरे के बीचों बीच एक दिया जला रहा, जला के रखा गया है, और कमरे में तमाम पदार्थ हैं चारों तरफ। तो उस कमरे में उपस्थित हुआ हुआ व्यक्ति सारे पदार्थों को देखेगा। उससे यदि पूछो कि इन कमरे के सारे पदार्थों को तुम किस प्रकाश से देख रहे हो, तो वह उत्तर देगा कि बीच में जलता हुआ जो दिया है उसके प्रकाश से मैं सारे पदार्थों को देख रहा हूं। ठीक इसके जगह एक घड़ा रख लो, अनेक छिद्र वाला, उस घड़े के अंदर उसी दिए को रख दो, और उस दिए का रोशनी उन घड़े के छिद्रों से बाहर निकलेंगे, तब उस व्यक्ति से पूछो, तुम घड़े के, क्योंकि बीच में घड़ा है इसीलिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सिद्ध होगा कमरे में, तो घड़े के ठीक पूर्व के तरफ के पदार्थों को तुम कौन से रोशनी से देख रहे हो, तब वह उत्तर देगा कि घड़े के पूर्व की तरफ का जो छिद्र है उस छिद्र से निकलते हुए रोशनी से मैं देख रहा हूं। फिर उससे पूछो, दक्षिण की तरफ के पदार्थों को तुम कौन सी रोशनी से देख रहे हो, तो वह यही उत्तर देगा, घड़े के दक्षिण की तरफ का जो छिद्र है उस छिद्र से निकलने वाले रोशनी से मैं दक्षिण की तरफ के पदार्थ देख रहा हूं। फिर उससे पूछ लो कि इस घड़े के पश्चिम की तरफ के पदार्थों को तुम किससे देख रहे हो, उसका उत्तर वही होगा, घड़े के पश्चिम की तरफ का जो छिद्र है उस छिद्र से निकलने वाला जो रोशनी है मैं उस रोशनी से पश्चिम की तरफ के पदार्थों को देख रहा हूं। ठीक इसी तरह घड़े के उत्तर की तरफ जो पदार्थ हैं, पूछो उससे कि तुम उत्तर के तरफ के पदार्थों को तुम किस रोशनी से देख रहे हो, तो वो भी वही उत्तर देगा कि घड़े का उत्तर की तरफ का जो छिद्र है उस छिद्र से निकलते हुए रोशनी से मैं उत्तर के पदार्थों को देख रहा हूं। उससे पूछो, पश्चिम के छिद्र से निकलने वाले पदार्थों माने प्रकाश से पूर्व के तरफ के पदार्थों को तुम देख पाओगे कि नहीं। मान लो पूर्व के तरफ का छिद्र बंद कर दो, मान लो कि पूर्व के छिद्र को बंद कर दो और पश्चिम के तरफ का छिद्र को खुला रखो, और उससे पूछो, हम ये पूर्व के तरफ का छिद्र को बंद कर देते हैं और पश्चिम के तरफ के छिद्र को जारी रखते हैं, तो पश्चिम के तरफ के छिद्र से निकलने वाले रोशनी से तुम पूर्व के तरफ के पदार्थों को देख पाओगे कि नहीं, तो उत्तर दे देगा कि मैं देख नहीं पाऊंगा। ये प्रकाश में ये भेद किसके चलते आ गया, घड़ उपाधि के चलते, घड़ छिद्रों के भेद के चलते ये रोशनी में ये भेद आ गया, तब बीच में घड़े के बिना जो रोशनी था वह एक ही रोशनी, एक ही दिया सबको प्रकाशित कर रहा था, वही दिया वही रोशनी घट उपाधि के अंदर आने पर वह एक एक छिद्र से निकलने वाले प्रकाश वह परिच्छिन्न प्रकाश हो गया,
अपरिच्छिन्न प्रकाश नहीं होगा, नहीं हो सका। प्रकाश को परिच्छिन्नता किया किसने? तो व्यापक विभू एक प्रकाश को परिच्छिन्न करके अनेक रूप में डिवाइड किया, बांट दिया, विपरीत भाव सिद्ध कर दिया। इसमें हेतु क्या हुआ? तो घट उपाधि हेतु हुआ। लेकिन दिया तो वही है, दिया तो वही है। इसी तरह आप कहते हैं, शब्द को तुम प्रकाशित करते हो तो कौन से प्रकाश से? यदि घट उपाधि न हो, मान लो ये शरीर ही आपका घट है और अंतःकरण वह दिया है, अंतःकरण में जो चेतना की अभिव्यक्ति है वह जलता हुआ रोशनी है, और आपकी जो अनेक जन्मों की कर्म वासना है, वही मान लो कि कर्म वही उस दिए को जलने में बाती का काम करता है, और जन्मांतरीय जो वासना है वही उस दिए को जलने में तेल का काम करता है। ये देख लो, ये तुम्हारे एक रूपक है, शरीर घड़े का काम कर रहा है, अंतःकरण दिए का, मिट्टी का दिए का काम कर रहा है, आपके जन्म जन्मांतरी अशुभ शुभ कर्म वो बाती का काम करता है, और आपकी जो वासना है वह तेल का काम कर रहा है। इन सब का सम्मिलित रूप में इस घड़े के अंदर दिया जल रहा है। यदि शुभाशुभ कर्म न हो तो मिट्टी का वह दिया नहीं होगा, तो तेल कहां रखोगे और बत्ती जले है? और दिया है और तेल है, बाती न हो, बिना बाती के खाली तेल से क्या दिया जले? और तेल है और बाती नहीं है तो क्या दिया जले? बाती है और तेल नहीं है तो क्या दिया जले? और दिया जल रहा हो, बाहर से हवा चल रही हो तो क्या दिया जले? उस दिए की रक्षा करने वाला घड़ा भी होना चाहिए। इस दिए की रक्षा करने वाला यह घड़ा जो इस समय कुर्सी के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि इसका नाम ही घड़ा है, और क्योंकि यह घड़ा इसलिए कि नाना छिद्र है, अनेक छिद्र है, और इसके अंदर वो दिया जल रहा है। अब ये घड़ा यदि न होता तो एक ही दिया सभी पदार्थों को एक ही साथ अपनी उपस्थिति से प्रकाशित करता, जैसे कि स्वप्न में होता है। स्वप्न में घड़ा नहीं रहता, स्वप्न में घड़ा काम नहीं करता होता है, यहां ख्याल रखना, लेकिन दिया जलता रहता है। जागृत में घड़े के बिना दिया नहीं जल पाता है, बड़ा आश्चर्य की बात है। जागृत में तूफान इतनी आती है कि घड़े के बिना दिया नहीं जलता। जागृत में तूफान है, ये जागृत का तूफान आप ही को तो हैरान कर रहा है। ये सारे तूफान जागृत में ही होते हैं ज्यादा, और इसीलिए दिए की रक्षा करने के लिए घड़े की आवश्यकता पड़ती है। और स्वप्न में तूफान इतना नहीं है जितना जागृत में है, वहां भी कुछ तो है तूफान, लेकिन जो तूफान है उसके लिए घड़ा ही आवश्यकता नहीं है, बिना घड़े का भी वह दिया जलता रहता है। थोड़ा हलचल होता है अलग बात है, थोड़ी थोड़ी जो हवा है उससे थोड़ा हलचल होगा दिए में। सुषुप्ति अवस्था में तो कोई बात, कोई हवा ही नहीं है। अब ये समझ लो कि हवा ही नहीं है तो फिर दिया कैसे जल रहा है? तुम लोगों के वैज्ञानिक बुद्धि है ना, इसीलिए प्रश्न कर लोगे, विदाउट ऑक्सीजन कैसे दिया जल रहा है? हवा के बिना तो दिया नहीं जलता है, प्रश्न कर सकते हो। और थोड़ा बहुत बुद्धि तो हमारे पास भी है कि तुम ऐसा प्रश्न कर सकते हो है?
तुम्हारे प्रश्न ऐसा हो सकता है, इतनी जानने की बुद्धि तो हमारे पास भी है। बिल्कुल हवा न हो तो महाराज दिया ही नहीं जल सकता है, तुम प्रश्न कर सकते हो ना। सुसुप्ति अवस्था में कोई हवा नहीं है, वहां कोई तूफान नहीं है और कोई हवा नहीं है, तो तुम प्रश्न करोगे फिर दिया ही नहीं जलना चाहिए वैसी जगह में। तो बोले वहां दिया जले इतना ऑक्सीजन तो है, लेकिन दिया हिले इतना हवा नहीं है। देखो ऑक्सीजन होना अलग चीज है और हवा होना अलग चीज है और तूफान होना अलग चीज है। बात समझ में आई कि नहीं? तूफान यदि उपस्थित हो तो तुरंत उसको रक्षा नहीं करो तो दिया तुरंत बुझ जाएगा, और यदि सामान्य हवा चल रही हो तो उसको रक्षा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिया जलता हुआ भी हिलता रहेगा, हिलता हुआ जलेगा, जलता हुआ हिलता ही रहेगा, लेकिन बुझेगा नहीं। और खाली ऑक्सीजन हो, हवा भी न हो, तो वहां दिया भी जलेगा और हिलेगा भी नहीं। बुझने की तो बात ही छोड़ दो, दिया बुझने के लिए तो तूफान ही चाहिए। तो सुसुप्ति अवस्था में वो ऑक्सीजन उतना प्राण रहता है, उतना जीवनी शक्ति रहती है, लेकिन वहां तूफान नहीं रहता, इसीलिए तो वहां बड़ा शांत है। तो बिना घड़े का स्वप्न में दिखता है सब कुछ पदार्थ, केवल मन ज्योति ही सारे के सारे वासना जन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है। तो एक ही मन ज्योति, वहां अलग अलग इंद्रियां अलग अलग उपाधियों से अलग अलग विषय ग्रहण करते हो, ऐसा नहीं है। स्वप्न में यदि शब्द सुनना हो, सत्संग सुनना हो, तो कान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मन ही उस शब्द को ग्रहण कर लेगा। स्वप्न में कोई रूप देखनी हो तो आंख की आवश्यकता नहीं पड़ती, मन ही उस रूप को भी देख लेगा। स्वप्न में किसी रस को चखना हो तो वहां रसन इंद्रिय जिह्वा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मन ही उस रस को प्रकाशित कर लेगा। स्वप्न में यदि कोई गंध को जानना हो तो वहां नाक की ग्राणेन्द्र की आवश्यकता नहीं है, मन ही उस गंध को ग्रहण कर लेगा, प्रकाशित कर लेगा। स्वप्न में कोई स्पर्श को जानना हो तो त्वचेन्द्र की आवश्यकता नहीं है, वहां मन ही स्पर्श को ग्रहण कर लेगा। गर्म है कि ठंडा है, वहां त्वचेन्द्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मन ही उसको प्रकाशित कर लेगा। तो अर्थात एक ही मन, वहां घड़े के बिना का मन है वो। जैसे घड़े बिना का दिया कमरे के मध्य में रखा हुआ तो सारे पदार्थों को वो प्रकाशित करता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सारे पदार्थों को एक ही दिया प्रकाशित करता है। कोई ये नहीं कहेगा कि ये पूर्व की रोशनी से प्रकाशित हो रहा है, कोई ये नहीं कहेगा कि पश्चिम की रोशनी से प्रकाशित हो रहा है, कोई ये नहीं कहेगा कि दक्षिण की रोशनी से प्रकाशित हो रहा है, कोई ये नहीं कहेगा कि उत्तर की रोशनी से प्रकाशित हो रहा है। एक ही मध्यस्थ दीपक की रोशनी से सभी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण

0: स्वप्न में नहीं होगा। और सुषुप्ति में तो कोई पदार्थ ही नहीं है, सुषुप्ति में तो कोई पदार्थ ही नहीं है, केवल अपने आप का भान वहां होता है, उसका प्रसंग आगे आएगा। मैं पहले इसी एग्जाम्पल पर तुम्हें बता रहा हूं, ये घड़ा है, देह एक घड़ा है, इसमें होने वाले जो इंद्रिय के गोलक हैं और अलग अलग इंद्रियां हैं वह उस घड़े के छिद्र हैं, और इसके अंदर जलता हुआ जो आत्म ज्योति है वो ज्योति की रोशनी अलग अलग इंद्रियों से निकलती है। और ये पंच विषय जो आपको कह रहे हैं, पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, या एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहने वाले पदार्थ की तरह है, और ये अलग अलग इंद्रिया उस घड़े इंद्रियां ये अलग अलग एक ही घड़े के अलग अलग दिशा के छिद्र की तरह समझ लो, तब कान से निकलने वाली जो रोशनी है वो केवल शब्द को तो ग्रहण करेगी।
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Siruthondar Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम सुनेंगे एक अद्भुत शिव भक्त की कहानी जिनका नाम चिरतुंडर है। इनका और एक नाम भी है जो है परम ज्योतियार। चिरतुंडर की कथा विचित्र है क्योंकि इसमें भक्ति द्वारा सामाजिक और नैतिक दृष्टि से वर्जित कर्म का प्रसंग है। तमिलनाडु में आज शैवम का अर्थ है मांसाहार की वर्जना। संभवत 1000 वर्ष से अधिक समय पूर्व मांसाहार की ऐसी वर्जना नहीं थी। यह कथा कर्तव्य के लिए भावना की के त्याग की है, अपने आदर्श पर टिके रहने की है, और युग बोध बदल जाने के कारण किसी भी रूप में अनुकरणीय नहीं है। कावेरी नदी के तट पर एक गांव बसा है चिंगाटमकुड़ी। कई शती पूर्व यहाँ के एक आमाध्य कुल में परम ज्योतियार का जन्म हुआ। परम ज्योतियार और चिरतुंडर एक ही भक्त का नाम है। परम ज्योतियार बड़े पराक्रमी और वीर थे। कांची के नरसिंह पल्लव राजा के सेनापति हो बनकर इन्होंने पुलकेशी को युद्ध में पराजित किया और उनकी राजधानी वातापी नगर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सेवानिवृत्त होकर परम ज्योति अपने गांव चिंगाटमकुड़ी में रहने लगे। शिव भक्तों की पूरी निष्ठा से सेवा इनका जीवन क्रम बन गया। प्रतिदिन एक शिव भक्त अतिथि को अन्न खिलाकर ही वे स्वयं भोजन करते थे। शिव ने इनकी परीक्षा लेने के लिए एक लीला रची। एक दिन कोई भी अतिथि न मिला। परम ज्योतियार स्वयं घर से साधु की खोज में निकल पड़े। इस बीच उत्तर भारत के एक वैरागी उनके यहाँ आए। इन्हें घर में न परम ज्योतियार को घर में न पाकर इनके द्वारा बनाए गए गणपति ईश्वर के मंदिर में टिक गए। वैरागी के आगमन की बात सुनकर परम ज्योतियार इन्हें बुलाने आए और भोजन के लिए आमंत्रित किया। वैरागी ने शर्त रखी कि किसी भी परिवार का 5 वर्षीय इकलौता पुत्र यदि काट कर उसके मांस को अगर परोसा जाए तो उनके यहाँ भोजन करना वे अनुकरण करेंगे या पसंद करेंगे। परम ज्योति सीधे पाठशाला गए, अपने एकमात्र पुत्र को बुलाकर वैरागी की इच्छानुसार पालक का मांस पकाकर वैरागी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन प्रारंभ करने से पहले वैरागी ने कहा, यदि आपका कोई पुत्र हो तो उसे भी हमारे साथ भोजन के लिए बिठाया जाए। परम ज्योति ने संक्षिप्त उत्तर दिया, वह इस समय यहाँ काम नहीं आएगा। वैरागी ने आदेश दिया, जब तक आपका बालक हमारे साथ बैठकर भोजन नहीं करेगा हम भी भोजन नहीं करेंगे। दुविधाग्रस्त पति पत्नी दोनों घर से बाहर निकले और गली में खड़े होकर पुकारने लगे, चिराड़ा हमारे बेटे आओ, शिव भक्त तुम्हें भोजन के लिए बुला रहे हैं। अद्भुत चमत्कार हुआ। प्रतिदिन की भांति बालक पाठशाला से दौड़ा चला आया। बच्चे को लेकर अचंभित परम ज्योति जब अंदर गए तो वहां वैरागी दिखाई नहीं दिए।

0: स्थान पर स्वयं भगवान शिव ने पार्वती और पुत्र स्कंद सहित उन्हें दर्शन दिए। प्रश्न यह है कि अपने ही पुत्र को काटकर उसका मांस पकाने की सजा किसे मिली? इसका उत्तर यह है, नरसिंह पल्लव के सेनापति परमज्योति पुलकेशी को युद्ध में जीतकर उसे वातापी तक खदेड़ने वाले परम सैकड़ों योद्धाओं को मौत के घाट उतारा था। उस समय देश की रक्षा के लिए कर्तव्य कर्म करते हुए उनके मन में दया या करुणा का भाव नहीं जगा। राजा के आदेश का पालन करते हुए उसके औचित्य के बारे में विचार करना या कर्म करने के बाद पश्चाताप करना संभव नहीं था। कर्तव्य के नाम पर सैकड़ों वीरों की लड़ाई को लड़ाई में मारने वाले परमज्योति के कर्तव्य की परीक्षा की घड़ी तब आई जब उसने शिव भक्तों की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य मान लिया। परीक्षा यह कि क्या पुत्र के प्रति सहज वात्सल्य के कारण कर्तव्य को तिलांजलि देते हैं या किसी भी मूल्य पर उसका पालन करते हैं। चिरतोंडर कर्मवीर सिद्ध हुए जो हर स्थिति में अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे और बिना रोग द्वेष के अपना कर्तव्य पालन करके शिव द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हुए। स्मरण रहे, इस प्रकार की कथाएं कथा मात्र की समझनी चाहिए। समाज कानून नवीन परिस्थितियां इस प्रकार के किसी भी वर्जित कर्म को करने की अनुमति नहीं देते। प्राचीन काल की इस कथा को एक पौराणिक कथा के द्वारा भक्त के असीम त्याग के लिए अतिशयोक्ति पूर्ण ढंग से वर्णित किया गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में इस प्रकार के कर्तव्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन चिरतोंडार या परमज्योति एक परम भक्त थे, इसलिए वे ऐसे कर्म करने में सफल हुए और शिव को प्रसन्न कर सके। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Saivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Dhyaye Nityam Aheesam Rajat Girinibham Charu Chandra Putansam Ratna Kalpojvalangam Parasumrigavara Veti Hastam Prasannam Padmasinam Samantat Stutam Amaraganir Vyagrakrityam Vasanam Vishwadhyam Vishwavandhyam Nikhilabhayaharam Panchavakram Trinetram Narayanam Padmabhavam Vasishtam Shaktim Chatat Putra Parasarancha Vyasam Sukam Gaudapadam Mahantam Govinda Yogindra Mathasya Shishyam Sri Sankaracharya Mathasya Padma Padancha Hastamalakancha Shishyam Tantrotakam Vartikakaramanyan Asmat గురుం సంతతమానతోస్మి. విశుద్ధ జ్ఞానదేహాయ త్రివేది దివ్య చక్షుసే శ్రేయః ప్రాప్తి నిమిత్తాయ నమః సోమార్ధధారిణే. ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః.

चंद्रशेखर रक्षमा। ओम ओम ओम। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित मातुश्री बेलाबेन मूलजीभाई विश्राम दहिया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत आदिगुरु शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी इस विषय पर विचार चल रहा है। चतुर्दश दिवसीय यह श्रृंखला 14 दिवसीय, तो विगत 16 तारीख से शुरू हुआ था और आज अंतिम दिन है और स्तोत्र भी लगभग आज अंतिम है। यूं तो इस स्तोत्र पर विगत 4 वर्षों से विचार चल रहा है, अभ्यास के लिए श्लोक नंबर है शिवानंद लहरी का 97। आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव के प्रति कौन सा भाव, कैसा भाव व्यक्त करते हैं, तो किस प्रकार का भाव व्यक्त करते हैं, ये स्तोत्रों से पता चलता है। या भक्तों को कैसा भाव रखना चाहिए, तो ये पता चलता है। प्रचरत्यभित प्रगल्भ वृत्या मदवान्येष मनः करी गरीयान् परिगृह्य नयेन भक्तिरज्वा परमस्थाणुपदं दृढं नयामम् सर्वालंकारयुक्तां सरलपदयुतां साधुवृत्तां सुवर्णां सद्भिः संस्तूयमानां सरसगुणयुतां लक्षितां लक्षणाढ्यं उद्यतभूषा विशेषा मुपगत विनयाम्

0: अन्यकाम त्वं गृहाण इदं ते युक्तं वा परमशिवकारुण्यजलधि गतौ तीर्यग्रूपम् तव पदशिरो दर्शन धिया। हरि ब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि चरन्तौ श्रमयुतौ कथं शम्भो स्वामिन् कथय मम वेद्योऽसि पुरतः। स्तोत्रेणालमहं प्रवत्स्मि न मृषा स्तोत्रेणालमहं प्रवत्स्मि न मृषा न मृषा देवाविरिञ्चादयः स्तुत्यानां गणना प्रसङ्गसमये त्वामग्रगण्यं विदुः माहात्म्याग्रविचारणप्रकरणे धानातु सस्तोमवत् दूतास्त्वां विदुरुत्तमोत्तमफलम् शम्भो भवत्सेवकः। स्तोत्रेणालमहं प्रवच्मि न मृषा देवाविरिञ्चादयः स्तुत्यानां गणना प्रसङ्गसमये त्वामग्रगण्यं विदुः माहात्म्याग्रविचारणप्रकरणे धानातु सस्तोमवत् दूतास्त्वं विदुरुत्तमोत्तमफलम् शम्भो भवत् सेवकः शम्भो भवत् सेवकः। द्विरावृत्ति ग्रंथ समाप्ति सूचक ऐसी परंपरा है। अंत में किसी एक वाक्य का पुनरावृत्ति किया जाता है तो वह प्रसंग की समाप्ति का सूचक है। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव के सामने ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। लगभग इस श्लोक और इससे पहले का जो श्लोक है समानार्थक ही है, भाव दोनों का समान है। वहां पर भी उस श्लोक में भी मन को हाथी कहा था और इस श्लोक में भी मन को हाथी ही कहा है। उस श्लोक में भी हाथी मदवान है और इस श्लोक में भी हाथी मदवान ही है। लेकिन क्यों शंकराचार्य जी ने अचानक उस श्लोक में उस मदवान हाथी के लिए भक्ति रूपी जंजीर का प्रयोग करने के लिए कहा, और इस श्लोक में भक्ति रूपी रस्सी को प्रयोग करने के लिए कहा? वस्तुतः एक ही है, वहां पर भी भक्ति जंजीर भक्ति का ही है और यहां पर भी रस्सी भक्ति की ही है। सामान्य व्यवहार में लगता है कि जंजीर थोड़ा, जंजीर जो शब्द प्रयोग किया है काफी मजबूत है, काफी बलवान तगड़ा बंधन है वो जंजीर। शंका नहीं कि साधारण प्रयत्न से उसको तोड़ा जा सके, रस्सी के बारे में वो भाव नहीं बनता है, रस्सी के बारे में वो भाव नहीं बनता जो भाव जंजीर के बारे में बनता है। तो जंजीर बलवान है, मजबूत है, और जंजीर की अपेक्षा रस्सी, सभी के दिमाग में यह आता है कि रस्सी जंजीर की अपेक्षा कमजोर रहता है। सामान्य बंधन के रूप में रस्सी को लिया जाता है और विशेष बंधन के रूप में जंजीरों को लिया जाता है। जब बंधन विशेष होता है तब जंजीर का प्रयोग करना पड़ता है। हाथी ज्यादा ही उन्मत्त हो तो जंजीर का ही प्रयोग करना पड़ेगा, और हाथी सामान्य होगा तो रस्सी से भी काम चल जाएगा, लेकिन बांधना तो पड़ेगा। वो आप लोग तो बंबई में रहते हो, हाथी का जो समूह है क्या तूफान करते हैं, क्या नुकसान करते हैं, इस बात को आप लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, कोई भान नहीं है। ये तो हम पहाड़ी और जंगलियों को पता है। आसाम और नेपाल के पूर्वी प्रांत अत्यधिक हाथी उधर पाया जाता है, और हाथी झुंड के झुंड चलते हैं, तो झुंड के झुंड हाथी चलते हैं। ये जिस गांव में बस्ती में घुस जाए ना, अब गांव में तो पक्के मकान तो होते नहीं है, लकड़ी के घास फूस के मकान होते हैं, सब उजाड़ देते हैं, बस्ती के बस्ती उजाड़ देते हैं, एक घर नहीं दो घर नहीं। और ये फिर घुसते हैं तो एक दो नहीं भाई, तीस तीस चालीस चालीस का झुंड एक साथ घुसता है। अब हल्ला करते हुए घुसते हैं, चिंगाड़ते हुए घुसते हैं और उजाड़ देते हैं, पूरा का पूरा बस्ती उजड़ जाता है। इसलिए ये हाथी खुला छोड़ने के पशु तो है नहीं, अब फिर भी बांधे तो कितनी को बांधे, एक दो हो, जंगलों में हजारों हाथी हैं, है ना, नेपाल और आसाम एक ही रेंज है वो। आज सुबह, कल सुबह आसाम गुवाहाटी में भी 6 स्केल का भूकंप आ गया। वो एक ही रेंज है वो, नेपाल में जो आया था 8 रिएक्टर स्केल का था, आज सुबह गुवाहाटी में आया 6 रिएक्टर स्केल का था। और इधर अल्मोड़ा की तरफ भी आ गए शहमाजी के दिन, कश्मीर में भी आ गए, तो 2-3 जगह एक ही दिन में आ गया। वो रेंज वही है, पहाड़ी रेंज, तो छोड़ना ही पड़ता है। तो लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं हाथी को भले ही जंगल में छोड़ दो, ये मन को तो छोड़ नहीं सकते, इसको तो जंगल में क्या शहर में भी नहीं छोड़ सकते। ये तो जहां भी रहेगा वही तूफान करेगा, वही उजाड़ेगा, ये इसका नियंत्रण तो हर हालत में होनी ही चाहिए। ज्यादा ही उन्मत्तता है तो जंजीर से बांधो, और थोड़ा कम है तो रस्सी से बांधो, इतनी फर्क है। बांधो तो जरूर है? शंकराचार्य जी कहते हैं यहां प्रचरत्यभिता प्रगल्भ वृत्तिया शिवजी के लिए संबोधन है परमा परमात्मा। हे परमात्मा, परम आत्मा परमात्मा अर्थात सर्वशक्तिमान, एस मदवान मनः करी, एस मदवान मनः करी, मदवान एस मनः करी, मद से उन्मत्त हुआ मन रूपी हाथी, करी माने हाथी, कड़ी नहीं समझ लेना फिर। और जो री उच्चारण नहीं कर, रा उच्चारण नहीं कर सकता है तो कड़ी ही कहेगा वो, तो करी है। कैसा है ये प्रचरति अभिता, चारों तरफ पहुंच जाता है, अभिता माने चारों तरफ, प्रचरती घूमता ही रहता है। इस मद वाले हाथी के लिए कहीं वीजा नियम भी लागू नहीं होता इमिग्रेशन में। तो पहुंच जाएगा अमेरिका, पहुंचने के लिए इसको वीजा लगेगा है? परितः प्रचरती, अभितः प्रचरती, चारों तरफ घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। जहां सूर्य नहीं पहुंचता वहां पर भी पहुंच जाता है, इसलिए कहा है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि क्या पहुंचेगा, ये मन पहुंचेगा तभी ना कवि पहुंचेगा है। कभी उपलक्ष्य मन, मन पहुंचेगा तभी कभी पहुंचेगा। तो सूर्य जहां नहीं पहुंचते हैं वहां पर भी ये मन करी प्रचरती पहुंच जाता है। और दूसरी बात कह रहे हैं कैसे पहुंचता है, प्रगल्भ वृत्तिया प्रचरति, बड़ा साहसिक पूर्वक साहस पूर्वक विचरण करता है। प्रगल्भ शब्द का अर्थ होता है साहस, डर नहीं उसको, किसी का डर नहीं, कहीं डरता नहीं है वो, है प्रगल्भ वृत्तियां, साहसपूर्वक प्रचारती। गरीयान
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: ऋचं वाचं

पश्यामि प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहौजो मयि प्राणपानो जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनिषो वादितृणम् बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल से विचार हम लोग वेदांत परिभाषा के ऊपर कर रहे हैं। वेदांत की ब्याज से दर्शन की समीक्षा चल रही थी, क्योंकि वेदांत दर्शन कोटि में है, इसलिए इसके पूर्व सारे दर्शनों की संस्कार बहुत जरूरी है। द्वादश दर्शन स्वीकृत है, प्रथम दर्शन चार्वाक दर्शन, द्वितीय जैन दर्शन आता है, तीसरे नंबर पर है शौत वैभाषिक, चौथे नंबर पर शौत्रांतिक, पांचवें पर योगाचार और छठवां है माध्यमिक। ये छह दर्शन नास्तिक का कोटि में माने जाते हैं, और आगे जो षड दर्शन है जिनको आस्तिक कहते हैं। आस्तिक नास्तिक का विवेचन इतने मात्र से है कि जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं उनको तो कह दिया आस्तिक, जो वेद के प्रामाण्य को नकारते हैं अपनी मति बुद्धि युक्ति तर्क वितर्क से ही बात को समझते समझाने का प्रयास करते उन्हें नास्तिक कोटि में रखा है। वैसे पाणिनीय सूत्र के आधार पर एक सूत्र है अस्ति दिष्टम मतिज, इसका तात्पर्य है अस्ति पर लोके मति यस्य स आस्तिकः, जिसकी परलोक में मति मतलब बुद्धि है निश्चय करता है वह आस्तिक। ऐसा आस्तिक नास्तिक शब्द का निर्वचन पाणिनीय व्याकरण से होता है, पर ये आस्तिक नास्तिक की परिभाषा पूरा पूरा इस सब जगह घट नहीं पाता है, क्योंकि ऐसा माने तो कुछ परलोक की सत्ता आस्तिक में भी नहीं मानते, इसलिए अंत में कहना पड़ता है कि वेद प्रामाण्य कुछ स्वीकारने वाले आस्तिक नहीं स्वीकारने वाले नास्तिक। आस्तिक कोटि में सर्वप्रथम न्याय वैशेषिक ये दो दर्शन आए, इसके बाद सांख्य और योग, इसके बाद पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जिसको हम कहते अध्वर मीमांसक, उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते। अध्वर शब्द का अर्थ है यज्ञ, और इसके जो वेदांत परिभाषा के निर्माणकर्ता उनका नाम भी क्या है, धर्म राजा ध्वरिंद्राचार्य। अध्वर मतलब यज्ञ, तो ये कुल मिला के छह षड आस्तिक दर्शन हो गए। इनके कर्ता कौन है ये भी आपको वैसे प्रायः तो मालूम ही होगा। चार्वाक दर्शन के कर्ता के विषय में ये प्रसिद्धि है, किंवदंती है,